0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां

अमरीका ऐं ईरान अमन मुआहिदे जे शुरूआती मतन ते इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ अमन मुआहिदे जे मतन ते अमरीका ऐं ईरान जे मुतफ़िक़ थियण जी तस्दीक़ कंदे चयो आहे त अमन पहिरियों एतिरो वेझो न हो जेतिरो हाणे आहे। अमन मुआहिदे खे नाकाम करण वारा साज़िशी कॾहिं बि कामयाब न थींदा।

0: सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह के मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज है। माली साल 26-27 के लिए इकतसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है। खातिर वर्ग की औसत शरह 8.2% मुतवक्के है। इस तरह 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज है।
1: सरकारी मुलाजमन के पगार ने रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 7% वाध, पोरतन के घट में घट माहवार जुरे में 10% वाध की तजवीज। पगारदार तबके से लागू सरचार्ज भी खत्म थी। वफाकी हुकूमत ने माली साल लाए 18,000 अरब रुपये का वधिक बजट पेश कर छी। नाने वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब बजट कौमी असेंबली में पेश कई। नए माली साल लाए वफाकी हुकूमत के खर्चन जो खातो 17,495 अरब रुपया लगाया वो। PSDP लाए 1,000 अरब रुपया मुख्तस किया वह। परडेही कर्जन जो ब्याज भरने लाए 8,054 अरब रुपया रखने की तजवीज। दिफा लाए 3,000 अरब रुपया मुख्तस। सूबन जो NFC हिस्सों 8,848 अरब रुपया मुकर किया वो। कौमी तरक्याती प्रोग्राम लाए 3,675 अरब रुपया रखने की तजवीज। वफाक के तरक्याती बजट लाए 1,000 अरब सूबन तरक्याती बजट 2,224 अरब रुपया मुख्तसर।

0: जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। दार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटताई। सुपर टैक्स 10 में घटाए 8 सैकड़ों कर छो। सालानो 15 का 50 करोड़ तई आमदनी के 6 स्लैब से सुपर टैक्स खत्म किया वो। 22 का 32 लख सालानो कमाने लाइ इनकम टैक्स की शरह 23 में घटाए 20 सैकड़ों कई वही। 32 लख 41 लख आमदनी के टैक्स की शरह 25 सैकड़ों करण की तजवीज। 41 का 56 लख कमाइंदड़ 29 सैकड़ों इनकम टैक्स भरीदा। 56 का 70 लख सालानी आमदनी से 32 सैकड़ों इनकम टैक्स की तजवीज़।

एनएफसी मां सिधियूं मुंतकलियूं अकेली पंजाब खां टिन सूबन खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्च जो की पोल मां सूबन खे मजमूई तौर ते 88 खरब 48 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मुंतकली जी मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 खरब 7 अरब 18 करोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 खरब 43 अरब 34 करोड़ 60 लख ऐं बलोचिस्तान खे 7 खरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रूपया मिलंदा। बजट में विर्च जोगी पुल जी रक़म हलंदड़ साल जी भेट में 6 खरब 46 अरब 78 करोड़ 80 लख रूपया घटि आहे।

0: जिसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहरा N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम तहरे फहरिस्त है। इसी तरह शुमाल जुनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि 70 हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंशियल से।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0385 569 0300 003 8569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0302018 0003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर लस्तगरी कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

सवाली समझ के मैनू अपने दर्द तुला से लाजर हिस्से या कोई ना तेरे नत जी सा तेरे नत बरसा लगे दिल दे फटन आपे मैं शीसा कदी जत सुन सके बेचैन माया

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: तरह 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज है।
2: सरकारी मुलाजमन के पगार रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन औरत घट में घट माहवारी उजर में 10% वादी तजवीज। पगारदार तबके के लागू सरचार्ज पर खत्म। वफाकी हुकूमत नए माली साल लाए 18,000 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छदी। नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब बजट ते कौमी असेंबली में पेश कई। नए माली साल लाए वफाकी हुकूमत के खर्चन जो खातो 17,495 अरब रुपया लगाया वो। PSDPL लाए 1,000 अरब रुपया मुख्तस कया व्या। परडेही कर्जन जो व्याज भरण लाए 8,054 अरब रुपया रखने की तजवीज। दिफा लाए 3,000 अरब रुपया मुख्तस। सूबन जो NFC हिस्सो 8,848 अरब रुपया मुकरर किया वो। कौमी तरक्याती प्रोग्राम लाए 3,675 अरब रुपया रखने की तजवीज। वफाकी तरक्याती बजट लाए 1,000 अरब सूबन की तरक्याती 1,224 अरब रुपया मुख्तस।

0: जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 37% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। सरदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटताई। सुपर टैक्स 10 में घटाए 8 सैकड़ों कर छो। सालानो 15 का 50 करोड़ ताई आमदनी 6 टैक्स खत्म कर वो। 22 का 32 लाख सालानो कमाइंदर इनकम टैक्स की शरह 23 में घटाए 20 सैकड़ों कई वही। 32 का 41 लाख आमदनी टैक्स की शरह 25 सैकड़ों करण की तजवीज। 41 का 56 लाख कमाइंदर 29 सैकड़ों इनकम टैक्स भरीदा। 56 का 70 लाख सालानी आमदनी 32 सैकड़ों इनकम टैक्स की तजवीज़।

एनएफसी मां सिधियूं मुंतकिलियूं अकेले पंजाब खे 3 सूबनि खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्थ जोगी पोल सूबनि मां मजमूई तौर ते 88 खरब 48 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मुंतकिली जी मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 खरब 70 अरब 18 करोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 खरब 43 अरब 34 करोड़ 60 लख ऐं बलूचिस्तान खे 7 खरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रूपया मिलंदा। बजट में वेसे जोगी पोल जी रक़म हलंदड़ साल जे बजट में 6 खरब 46 अरब 67 करोड़ 80 लख रूपया घटि आहे।

0: जिसने कराची को चमन से जोड़ने वाली बलोचिस्तान की अहम तरीन शाहरा N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम सहरे फहरिस्त है। इसी तरह शुमाल जुनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि 70 हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंशियल से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385769
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

गुर्दे की पथरी मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बदन मर्दन औरतुन में वजन जो न बदन उन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301 91 8051।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज सुबह।
1: सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन एकवी दहशतगर्द मारजी पाया आईएसपीआर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस गुजे इतलात मीरान शाह ए भरपासे में ऑपरेशन कया 72 कलाकन में चार अहम दहशतगर्द समेत एकवी दहशतगर्द मारजी पाया इलाके में इम्कानी दहशतगर्दन के खात्मे लाए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब कार्रवाई थे सिक्योरिटी फोर्सेस की वाखाणा।

नायब वजीर आजम में पढ़ रही वजीर इसाकदार जो मिसरी पढ़ रही वजीर सा टेलीफोन खराब तो इसाकदार बदर सविच में खिते सूरत हाल गाल बिन अगवान पारा खिते में अमून इस्तकाम।

ईरान अमेरिका खिलाफ़ जंग जो फाते आहे मफ़ामती यादाश्त में त अञा ताईं सही नाहे थी। मतन में अञा बि तब्दीली मुमकिन आहे। लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते जंग जे ख़ात्मे जो ऐलान अबूरी मुआदे तहत थींदो। अमरीकी नाकाबंदी जो ख़ात्मो ऐं अमन हुरमत करण अबूरी मुआदे जो हिसो आहिनि। ईरान जे परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त इसराइल जहिड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआदे जे ख़िलाफ़ आहिनि। अमरीका जूं धमकियूं बंदि थियण घुर्जनि। ईरान दबाव आॾो न झुकंदो। असांजी तलवार हमेशा अबन हुरमत से लटकियल रहंदी। लबनान में जंग जे ख़ात्मे जो मतिलब इसराइल जो कब्ज़ो कयल इलाक़नि मां निकिरणु आहे। अबूरी मुआदो पहिरियों क़दम आहे। जेकॾहिं उन ते अमल न कयो वियो त एटमी प्रोग्राम ते बि ॻाल्हियूं न थींदियूं।

अमरीका ईरान अमन मुआहदे की शुरुआती मतन से इतफाक कर वरतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन मुआहदे के मतन से अमरीका ईरान के मुतफिक थे की तस्दीक कदे है तो अमन पे एतो वेझो न हो जो हाँ है। अमन मुआहदे के नाकाम करा साजिशी कदें भी कामयाब ना थींदा।

करमपुर में धाड़ेलन जो केटीएन न्यूज रिपोर्टर के घर से हमलो संदस सोट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो करे सन सोट शाह मुराद जाफरी के कतल कर छो फायरिंग में रिजब अली जाफरी जख्मी इतला बावजूद पुलिस वाके वारे हंध न पहुंती।

थर में बेज़ुबान जानवरन सा जुल्म में घड़ताई न थी। कलोई में जवाबदार डाची के कुहाड़न जा वार करे जख्मी कर छो। घोट बातो मोरामिया जदल जवाबदार कुहाड़न जा वार करे बेज़ुबान डाची जू जंगू भंजी छ्यू। डाची के मालिक अशरफ नेड़ो पारा जवाबदार की गिरफ्तारी जो मुतालबो।

0: It's 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियो, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

वज़ीर आज़म हिक भेरो ॿीहर अपोज़ीशन खे जमहूरियत जी मज़बूती लाइ अपोज़ीशन मिसाक खे जमहूरियत जी दावत ते छॾी क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं। बलूचिस्तान पाकिस्तान जो ख़ूबसूरत सूबो आहे। सिंध ऐं पंजाब बलूचिस्तान लाइ हिसो ॾिनो आहे। रेगुलेट मिसाल वठो, मुआदे खे बि पढ़ी वठो। बलूचिस्तान जी आवाम जो रेगुलेट में शेयर सभिनी जे साम्हूं आहे। महमूद खान क्वादर चमन शाह जो बि मुतालबो न कयो हो। कानून लागू इदारा मुल्क जे अमुन लाइ ॾींहं राति कम कनि पिया। सदन ख़िदमतुनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एहतराम थियणु घुर्जे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सियासत ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। टिन ॾींहनि दौरान फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान मारिजी विया दहशतगर्दनि जो अंग वधी 48 थी वियो। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस गुझे इतलात ते मीरान शाह ऐं भर पासे में ऑपरेशन कया, जंहिं दौरान वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 72 कलाकनि दौरान ऑपरेशन जे नतीजे में दहशतगर्दनि जे 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारिजी विया।

आहिनि। इलाके में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज जी वाखाण। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रखण वारे आज़म जो बरजाओ। ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआहिदे ते इतफ़ाक थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची चयो आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआहिदो थी सघे थो। मुआहिदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशा जीअं आमन हुरमत से लटकंदी रहंदी। ॿिनि सुबनि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। आमन हुरमत जो इंतज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो ऐं जंहिं बाबति तेहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

करमपुर में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर के घर से धाड़ेलन जो हमलो सनसोट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो कर सनसोट शाह मुराद जाफरी के कतल किया। फायरिंग में रजब अली जाफरी जख्मी थी, बावजूद पुलिस वाकई वाले हंध न पहुंची।

कराची में रोल कुतन जो राज कुतन जो लाड़ा वधी एक शख्स रबी सबब फोत शहर में रबी सबब फोत इन जो अंग वधी 14 थी पयो जना अस्पताल इंतजामिया मौजूद 45 साल निश शख्स के कुतन डाड़े हो जै वैक्सीन न कराई हुई अज रबी सबब फोत थियो है शहर में रबी सबब फोत इन जो अंग वधी 14 थी पयो है। उत्तर में बेजुबान जानवर से जुल्मन में घटताई न थी कलोई में जवाब तरन डाची के कुआड़ियों जा वार कर जख्मी कर छो गोठ बांधो मोरा में अणजतल जवाब तरन कुआड़ियों जा वार कर बेजुबान डाची जो जंगू भनी छो डाची के मालिक अशरफ नेड़ियो पारा जवाब तरन की गिरफ्तारी जो मुतालबो।

0: रंगवाणी बरसा बाड़ी उड़ी वगे फोत गोट सुबह सात खोसो में सत साल बिस्मल आशारी उड़ी वगे फोत थी वही गोठान पारा डॉक्टर जो टीमू मोकलण जो मुतालबो आगड़ी खेरो में माइटन वट घुम आयल बाड़ो गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत ओस्ता मोहम्मद वासी नव साल नवीद शेख गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत थी पाओ
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बाअख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था, आपने एंजॉय कर रही इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ए स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ए स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब आपका प्रोग्राम है तो आपका होना प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लाजमी होता है। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जनाब जरा टॉपिक की जाने बात है, तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो आप लोगों को बताते हैं। तो आज मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि बहुत से लोगों की ये आदत होती है ना कि वो खुद से बातें करते हैं, और कुछ लोग तो बड़ी संजीदगी वाली बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब जो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं अपने साथ, यानी कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो कई मरतबा हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम खुद से बातें कर रहे हैं क्या ये सही होता है या नहीं। लेकिन आज आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो हैं क्या खुद से बातें करते हैं, आप वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आप हमारे साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड ए स्किन ब्यूटी शो की बिल्कुल लाइव पोस्ट मिलेगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जनाब, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, और दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए, सबको पता चलना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है। तो आप भी जो है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त से पहले ही आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा मत किया करिए अपने साथ जुल्म, ये भाई सरासर जुल्म है खुद के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, खूबसूरती को जो है ना वो वैल्यू दिया करें, और अपने आप को जो है ना हमेशा आगे रखा करें, और अपने चेहरे का खास ख्याल रखा करें। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका क्या तरीकेकार है और कौन से प्रोडक्ट हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फन होता है, बातें होती हैं, गाने होते हैं, मजे करते हैं। तो जी आप हमारे साथ मौजूद रहिए और मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, क्या आप भी वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मसरूर अहमद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। कराची से मसरूर अहमद कहते हैं, आरजे मुस्कान जी फायजा का सॉन्ग सुनाइएगा। ओके जी, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। आदिल हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। मैं ठीक, और कहते हैं बेहतरीन पलांद, चुप करे अगते वधण, पाण के बेहतर बनाइण, ऐं सब कुछ अलाते छॾे ॾियण, मुनाफ़े कलाए मोद बराबर आहे। बिल्कुल तमाम सही चयो है। उनका अलावा है जी फेरोज अली बिरोही हमारे साथ है, लोग कहते सो गुड शो, थैंक यू। वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ है, कहते हाय सिद्राबाद जी। हेलो वफा मीर मुनव्वर भाई, और ये हमारे साथ है गुड गुड गुड गुड, वालेकुम अस्सलाम गुड गुड, कैसा नाम है भाई। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और जाहिद चांडियो हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम। अदी कियां आयो, अदी तमाजी सब मजे में आता बुदा कियां आयो। और अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं अच्छा प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी, बस प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, आपकी ये मोहब्बतें हैं, और बस आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ हैं, जाकिर हुसैन कोरी भाई वालेकुम अस्सलाम। और हैं जी मौलाई मुजाहिद बोजदार ठूफ चूसल से, मौलाई मुजाहिद बोजदार वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं, आपने दुआएं दी हैं बहुत शुक्रिया उसके लिए। मीर बेवस हमारे साथ हैं, हेलो हाय, योर शो इज अमेजिंग इन वॉइस स्वीट, थैंक यू। भक्त अली सियाल हमारे साथ हैं, भक्त भाई आपको भी वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुश आयो, हाँ हाँ बिल्कुल प्री पाण आयो है पंध करे गर्मी में। अच्छा कहते हैं किशोर भाई टॉपिक मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ, सबसे पहले मैं खुद से पूछता हूँ, बातें भी करता हूँ, क्या सही है क्या गलत, ये अच्छी बात है, खुद से बातें करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये जो आपके अंदर इंसान है ना ये क्या चाहता है, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो खुद से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये आज जो है ना पूरे प्रोग्राम में बातें हम करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है,
आपको नंबर बताती हूँ, पूरे प्रोग्राम में नंबर बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप उस नंबर के ऊपर रابطہ करिए, और नंबर के ऊपर रابطہ करने के बाद जो है ना आप लोगों ने बता सकें कि आप कहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं, किस एरिया में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ताकि वो अवेलेबल करा सके. तो आप बस इस नंबर के ऊपर रابطہ किया करें. नंबर है जनाब 03-15-799-0595. ओके जनाब, सो नंबर है 03-15-799-0595. जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आप लगाएं और खूबसूरत हो जाएं, ठीक हो गया. और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते ग्रेट होस्टिंग मैम आज, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं. उसके अलावा जनाब यहाँ पर टाइम हुआ जाता है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाएंगे. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का है और आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, बताएं तो जरा, पता तो चले. और मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं.

0: 98.8 सिंध की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महा से और बेजानपन,
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजे, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आके सिद्धराव के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और जनाब प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाते जा रहे हैं. तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ आप लोगों से ना सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो खुद से बातें करते हैं, और जो लोग खुद से बातें करते हैं वो क्या, मैंने देखा कि आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं उसमें किसी ने लिखा कि वो जहनी मरीज होते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैं आगे जाकर आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग खुद से बातें करते हैं तो क्या वो वाकई ज़हनी मरीज होते हैं या फिर कुछ और ही वजह होती है. ये जरा रुको, जरा सबर करो वाला सीन बनाते हैं और आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं नहीं, और साथ ही साथ क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं, आपने मुझे ये भी बताना है. और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स आते हैं ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये आप दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं. बिल्कुल जी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है जनाब इन प्रोडक्ट्स को, और आप लोगों की स्किन के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट्स. तो आप इस्तेमाल करके देखिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03157990595. ओके जी, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, जो है ना हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और जनाब किस प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक प्रोग्राम पहुँचाया जा रहा है. ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम, कहते बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी. चले जी, बिल्कुल कोई भी गाना आपको सुनाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है. और उसके अलावा हमारे साथ हैं आरजे सिद्रा, आपका 2 घंटे वाला शो हमारे तमाम गमों दर्दों और तकलीफों और परेशानियों को मिटा देता है. लाड़कना से इमरान अली बिरोही, भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये किसी के काम आ रहा है. सो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतें हैं. और गोठ मामन तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शोविरी नाई साहे सलाम तमा के, वालेकुम असलम प्यारा भा तमा के. और इरम कहती है मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ओके जी, सोने लाए ताड़ियों थी वजन, नहीं सोने लाए ताड़ियों वजायो बाबा, छो तो सोनो हाने सोनो थी वयो आहे, ऐ सोनो सोनो छो थी आए, छो तो सोनो जको इस्तेमाल करे तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. सो तमाम भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए तमाम भी सोना सोना थी वजो. और ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम आरजी डियर सिद्रा, ए बी रिंद फ्रॉम नवाबशाह, मैं खुद से तो बातें नहीं करता लेकिन नींद में रात को बोलने की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मुझे सुबह का चाय और नाश्ता होटल पे करना पड़ता है. क्या मतलब, आप घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते चले हाँ, ये जो बीमारी है ये कह सकते हैं कि बहुत जो है ना ये अजीब सी बीमारी है. और ये हमारे साथ हैं कौसर निसा, तेरी जन्नत अच्छा, ये पता नहीं क्या लिखा है तुमने, मैं ठीक देखती हूँ मुझे मिल जाएगा ये गाना तो आपके लिए लगा देंगे ठीक है. और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है तवाजा, खुश आयो अदी, ईद खां पो यको अवां जो शो सक्रेंट एफएम में नशर न थियो, अज हले पयो, वडे शौक सा बुधू पया तवां जो प्रोग्राम, ॾाढो इंतजार हुयो, सॉन्ग जरूर प्ले कजो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, और शफी आबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले सरमन सिंधी, तो सेवा ॾींह ॾुखियो सिद्रा, अच्छा चलें ठीक है, गानो चयो आए सो मोहब्बतूं प्यारे भांजो हलाईंदासीं गानो तवां जे लाइ. और ये कहते हैं इमरान भाई, टॉपिक बाजी हम ख्वाब में बात करते हैं अपने आप से, ख्वाब में बात करते हैं ये कैसे, देखें किस तरह के लोग हमारी दुनिया में पाए जाते हैं वो तो हमें तभी पता चलता है जब मैं आप लोगों से थोड़ी अजीबोगरीब से सवाल पूछ लेती हूँ, समझ रहे
चलिए आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से. मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जिक्र करें तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप जाने तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं. और हर तरह से मुराद यही कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को निराश नहीं करेंगे. आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट लेकर हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम मिल रही है, एक्ने ट्यूब मिल रहा है, सोप मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल साशी मिल रहा है, और जो ना वो लोशंस भी मिल रहे हैं. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों ने. और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो है ना अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जो लोग अक्सर ये मुझे कहते हैं कि असा तो ही प्रोडक्ट नायू लगाईंदा जिको असा लगाईंदा वो तो आहे ही न बाजी तां वट, सो असा वट हाने सब प्रोडक्ट अव तव्हांखे कोई भी बहानो न बणाए ॾींदासीं. ऐं तव्हांखे बिल्कुलु चवंदासीं त बाबा अगरि तव्हांजे लाइ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जा अगरि प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि त तव्हां उन्हनि मां फ़ाइदो हासिलु कयो. और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अगरि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात की जाए तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है. आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को फ्रेश रखती है, फेयर आती है, आपके चेहरे पर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है और एलोवेरा मौजूद है. ये इतने मजे के प्रोडक्ट्स हैं ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी. उसी के साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. और साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए अवेलेबल है. और जनाब व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है ये भी एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है. उसके अलावा अगर आप सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान है, तो बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए फेस वॉश भी अवेलेबल है. और फेस वॉश जो है वो विटामिन सी से तैयार किया गया है. बिल्कुल जी विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा. तो अगर आप व्हाइट एश का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम लगाइए. और साथ साथ अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो भाई मेरे ख्याल में आप लोगों ने इतनी सारी फेयरनेस क्रीमें इस्तेमाल करी होगी, ट्राई करके देखी होगी, लेकिन जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई सारी चीजें इसकी आगे फेल हैं, सारी चीजें इसकी आगे जीरो है, क्योंकि हमारा हीरो तो व्हाइट एश लवली क्रीम है. तो बिल्कुल जी व्हाइट एश लवली क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए, जो कि 30 विटामिन के कैप्सूल के साथ तैयार की गई है और इसके अंदर हर एक विटामिन मौजूद है. और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. और सनस्क्रीन ऐड करने का मकसद रीजन ये था कि आप लोगों की स्किन को ना सिर्फ खूबसूरती देंगे बल्कि आपकी स्किन को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे. बिल्कुल जी, ये जो आप काम करते हैं सूरज की, ये जो खतरनाक से किरणें होती हैं आपकी स्किन के ऊपर आती हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उन चीज़ों से आपको बचाने के लिए व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ना ये आ गई है मार्केट में. तो आप लोगों ने बस इस्तेमाल करनी है. और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं. तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है. आप बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कयो, उकराड़ा मायूं मर्द हर कोई लगाए. व्हाइट एश लवली क्रीम जेका आहे न उहा तव्हांजे लाइ सफ़ा भली क्रीम अथव. सो तव्हां सभु लॻाइजो. हुन खां अलावा जेके माण्हू एक्नी जी वजह सां परेशान आहे, अगरि आपके चेहरे पर बि एक्नी दाने बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, दाने जाते नहीं हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके लिए मौजूद है. अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. आपके चेहरे के दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे के दानों के साथ साथ आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे. आपके चेहरे पर कोई जलने का निशान हो, कोई कटने का निशान हो, कोई बहुत पुराना जिद्दी निशान हो जो कि बचपन से आप लोगों के साथ मौजूद है, ये तमाम निशानात खत्म हो जाते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं. तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के तरीकेकार भी आप लोगों को बताती चलूं कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाते हैं तो इसको आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोने से पहले इस्तेमाल कीजिएगा. और इस्तेमाल करने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, चाहे आप सोप इस्तेमाल करें व्हाइट एश वालों का या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें. अच्छे से अपना जो चेहरा है ना वो क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, अच्छे से अपने हाथों को क्लीन कीजिए. उसके बाद जहां जहां पर आपके एक्नी है, निशानात है या फिर जो आप चीजें रिमूव करना चाहते हैं वहां पर आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है. उसके बाद आप सुकून से सो जाइए, काम तो यही करेगा, आपने तो सिर्फ रेस्ट करना है. और उसके बाद सुबह उठकर आपने दोबारा से फेस वॉश कर लेना है, ठीक हो गया. और अगर आप व्हाइट
विशेष लवली क्रीम लगाना चाहते तो इसको आप दिन में रात में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। और अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम रात के टाइम इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है। लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा और ना मिलने की सूरत में आपने डायल करना है 03-15-799-0595। जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सके व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना दम है जनाब व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरती को, वेलकम बोलिए, क्योंकि अब आपकी खूबसूरती आपके हाथों में है।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, आप हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताते जाइए। और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा। और मुलाई मुजाहिद बोजदार क्या कहते हैं, सिडो जी टॉपिक अल्लाह ना करे जो बंदा खुद से बातें करे वो नफ्सियाती मरीज होता है, क्या बोलती तू माँ, एग्री नहीं कहता आज नगाल सा। और मीर बेवस हमारे साथ कहते चलो आओ किसी गाड़ी में बैठ कर जर्द पत्तों से ढकी लंबी सड़क पर चाय पीते हैं, आओ जिंदगी जीते हैं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई, खुश आयो मजे में, दर्दे दिल हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, के दी चंदा जाने कैसी आप, वेलकम टू शो, माशाल्लाह आप आ गई। हाँ जी मैं आ गई, देखो वो आ गया आदिल, बिल्कुल आपका गाना लगाते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और वासा भाई कहती अदी सडो जवाब मां पंजो पाण सा नाया गालाइंदो आई जे के पाजो पाण सा गालाइंदा है ओए मानू ओ छा हुंदा है जी नजर में सारे। ओके जी नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद है, हेलो ए एम अंसारी,

पासे निभाइण वारो इंसान जेको आहे न उहो घुर्जे, बाकी त ॻाल्हियुनि करण वारा माण्हू त खोड़ हूंदा आहिनि। समुझो था। अच्छा नियाज़ हुसैन मलिक भाउ, तव्हांखे प्रोग्राम आणे पए मोहबतूं, तव्हांजो समंदर गांगरू हमारे साथ मौजूद। हेलो साहिल खान कहते हैं, प्लीज खुदा और मोहब्बत का गाना चलाइएगा जी।

0: सहाय
1: अम्बा खाओ बाबा खाओ खाओ हजार भाग ये थी और टॉपिक ये हम करते हैं खुद से बातें पर सोचते हैं खुद के लिए. हाँ बिल्कुल ये अच्छी बात है. जो लोग खुद के लिए सोचते हैं वही शायद खुद से बातें करते हैं. दर्द दिल कहती है हाँ सच में आ गई. हाँ जी देखो और बेवस है मीर बेवस कहते हैं सिद्रा सुनो अच्छा गाना बोला है आपने सही सही सही. चले मैं देखती हूँ ये गाना आपका लगाने की कोशिश करेंगे. और जो लोग हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि हम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं. और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप नहीं कर चुके यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हैं तो भाईजान आप जल्दी कीजिए. कहीं देर हो गई ना तो फिर आप सोचते रह जाएंगे. ऐं सोचींदा आहिनि जेके माण्हू घणो उन्हनि जा जेका आहे न उन्हनि जे चेहरे ते बि झुरियूं अची वेंदियूं आहिनि. त मां नथी चाहियां त तव्हांजे चेहरे ते झुरियूं अची वञनि. ऐं तव्हां सोणा सोणा रहो, हमेशा यंग रहो, खूबसूरत रहो, तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी रहे. छो त इहो सभु तव्हां डिज़र्व कयो था. तव्हां इस्तेमालु कयो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

अच्छा किशोर भाई ते लॻी थो ओजरी वारो क्लिप ॾिठो न क्लिप छा मूं त मतिलबु ही वायरल थियण खां पहिरियां सॼो इंटरव्यू ॾिठो हुयो ओजरी खैर सुठी शइ हूंदी आहे पहिरियां न खाईंदी हुयमि पर हाणे खाईंदी आहियां छो त अॻे असां नंढपण में कुझु चीज़ूं न खाईंदा हुआसीं वरी थोरा वॾा थींदा आहिनि थोरी उहे चीज़ूं असां खाईंदा हुआसीं सो मां हाणे हुन फेज़ में हलां पई त जेके चीज़ूं अवल न खाईंदी आहे हाणे उहे सभु खावां थी दर्द दिलि केतिरी टॉपिक चवंदा हा यस करती हूं मैं खुद से बातें अच्छी बात है जी किया करे

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि बाजी पांचन जा डिनल जख्म एतरा त गहरा हुंदा आइन जेके वक्त भी नाहे भरे सगंदो या त ता बिल्कुल हकीकत वारी गाल कया पांचन जा जख्म जेके न वाकी नाहन भरबा चाहे वक्त केतरो ही छो न गुजरी वे असा के लगंदा त वक्त जेको आ वडो उस्ताद आहे आई मरहम आहे वक्त जे हथ में आई सब तवा जा जख्म भरे सगंदा पर ये नाहे हुंदो मगन रहो पान जी लाए तमा वठी अचो वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट्स की दवा इस्तेमाल करे सोना सोना थी वन्यो अच्छा यूनिस खोड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं आपको टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आप जनाब हमारे साथ मौजूद रहिए सुनती रहिए और एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाती जा रहे हैं खूबसूरत होती जा रहे हैं

0: FM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सत्रह फीसद इजाफा है। एक तरफ आपका तरक्की
4: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज़

इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 0300-3385-69

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: अच्छी बात है। तो बिल्कुल जो हम कॉल्स पिक करने वाले हैं, जो लोग कॉल्स पर आने वाले हैं, कोशिश ये किया करें कि मैं जब डेली बेसिस पर कॉल लेती हूँ तो आप रेगुलर जो है ना, यानी कि आज आपने कॉल करी, कल भी आप कॉल कर रहे हैं, तो इन चीजों से थोड़ा सा गुरेज किया करें। आपको पता है मेरा मीटर जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, फिर मैं कॉलें लेना बंद कर देती हूँ। तो भाई अगर आप स्मूथली चलेंगे तो मुझे भी स्मूथली कॉल्स लेने में कोई इशू नहीं है। तो आप ये कोशिश किया करें कि अगर आपने आज कॉल करी है तो कल परसों जो है ना वो आप कॉल किया करें, रोज रोज कॉल नहीं किया करें। ओके, इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं। खुद से बातें करने वाले लोग जो है ना वो आजकल कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, तो मुझे आप जल्दी से बताइए कि आप भी खुद से बातें करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो कहां से आप हमें सुन रहे हो और आपके क्या एरिया में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप जान चुके कि जनाब व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने सारे प्रोडक्ट्स और इनका इस्तेमाल आप लोगों की जिंदगी लिए कितना और क्यों जरूरी है। साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों के लिए तैयार की गए हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक टी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और जैसे कि ऐसा है ना कि रेगुलर जो नाइट क्रीमें होती हैं जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर फ्रूट्स एड किए जाते हैं, मिल्क टाइप चीजें एड की जाती हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंटी स्किन फेस वॉश को, तो आप लोगों को बताते चलें कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को शानदार वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सिर्फ दो दिनों में वाजे आपको अगर नतायज चाहिए तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करनी है। और जदीद अज्जा से तैयार की गई है जनाब, इसके अंदर हर वो चीज एड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की मदद करने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को चमकदार भी बनाए। और अगर आप लोगों की स्किन हमेशा डिहाइड्रेट रहती है तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो हाइड्रेट भी हो जाती है, आप लोगों की स्किन ग्लोइंग भी बन जाती है और आप लोग हमेशा ग्लो करते रहते हैं। तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से पहले आपने डी स्किन फेस वॉश का जो है ना वो भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेले मत लगाइएगा, डी स्किन फेस वॉश साथ में लाजमी लगाइएगा। और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। ये चीजें जो इसके अंदर एड की गई हैं ये क्या ही शानदार चीजें हैं जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रखती हैं, आपके चेहरे को क्लीन बनाती हैं, आपके चेहरे को जो है ना हमेशा आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो नजर आता है और साथ साथ आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी प्यारी हो जाती है, सॉफ्ट क्लीन और क्लियर हो जाती है। तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल जी, डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये नाइट क्रीम है, तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा खूबसूरत रहते जाइए, क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके हाथों में है। जो तो मां यू इन लाइ चवंदी आहे त हाणे ॾिसो न, तव्हां अगरि वठी ईंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त तव्हांजे हथ में हूंदी नी तव्हांजी खूबसूरती। तो तव्हां वञो बाबा वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश, ऐं तव्हांजी खूबसूरती तव्हांजे हथ में न बल्कि तव्हांजे चेहरे ते हुजे, समझो था। सो वञो वञो जल्दी जल्दी वठी अचो, ऐं तव्हांजे एरिया में नथी मिले तो तुम डायल कर 03-15-799-0595 नंबर से लाजमी राबो कर जी तमाम से एरिया में भी अवेलेबल थी वन। उनका अलावा अस कॉलिंग वो जो सेगमेंट आ वो स्टार्ट क्यों था। ओके जी, सो अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। सो हम ये वाली कॉल पिक कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलर होगी कॉलर है, देखें कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, के रस्ते से घर मौजूद फहद भाई, छाला खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में, मुके बुधाए प्रोग्राम बुधो पिया।
1: प्रोग्राम बिल्कुल बुधो जादी।
0: अच्छा, टॉपिक ती तमा छा चवण वारा आयो?
1: टॉपिक आप ही ऐसा नहीं गले जानि मैं खाव गई।
0: चलो मुके बुधाए ता केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कियो हन मल ता या ना सोचो ता
1: पढ़ी
0: वो मिली वो ओके थैंक यू। ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर है 0333-221-322 एंड 88। फहद भाई ने कहा कि मैं लाड़काना आऊंगा तो परचेज करूंगा, हमारे यहाँ नहीं मिल रही ये प्रोडक्ट, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। नेक्स्ट कॉल हम पिक करते हैं, देखते कौन मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम।
0: कैसे सकट मौजूद है?
1: झंडो
0: मरी वारो भा, बिल्कुल याद आई, मुख्य बुधायो प्रोग्राम बुधो पिया।
1: बिल्कुल प्रोग्राम तानी बुद्धि जा इन रिलेटेड जॉइन कया खालक लाशारी मको फोन दे की प्रोग्राम हले वती साल भी वसे पहुंचे कर खान भाई गई नी।
0: अच्छा कॉल ट्राई कही तांजी लगी भी वही?
1: बिल्कुल लगी हुई प्रोग्राम कर वे निंद्र की सदा निंद्र की अच्छा।
0: चलो निंद्र भी जरूरी है, मके बुधायो तो तमा केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया?
1: ये जो बतावा बुधायो भाई
0: केड़ो बाबा नालो बुधायो ना, मां सोचा दी तो ताके नालो खबर आए या ना? दिमाग हट कम कर आइए ना। चलो खेड़न दोस्तन की याद कंदा ठगियो कंदा।

0: ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 0333221322 एंड 88 नेक्स्ट कॉल दिसों दा केरा से सगर मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: मुलायम सलाम मदद केरा से सगर मौजूद है.
1: वासा भाई.
0: वासा भाई जी कॉल लगी या वासा भाई खुश आयो. अलहमदुलिल्लाह प्रोग्राम तो वासा भाई बुद्धे पे टॉपिक ते छा चंदो वासा भाई ता जो लफ्ज समझ में आए तो हाने बुधायो.
1: बिल्कुल अजी जे के पण पांच सा गला जाय ने.
0: अच्छा
1: अजी या बेवश या दरबणा मारू दा
0: दरबणा ओ छा हुंदो आ
1: अजी को पण पांच सामना करन ता तो मैं समझा छो दा
0: दरबणा में पेरो दफो यो लव्स बुदा दी तडे मखे समझ में गाल ना आई. मखे बुदा केड़ा प्रोडक्ट के इस्तेमाल कयो था दरबणा भा.
1: ना ना इस्तेमाल किया
0: छो इस्तेमाल न किया है ने
1: दरबणा से इंशाल्लाह.
0: चलो ताने गोठा में मिलन था कोन
1: अरे गोठ ना सेरा दुकान मान बाकी शहर में सुना सेरा तेरे में.
0: चलो रतो तेरे वणो तो ता वठिए जो सैया उते तवा के मिली वेदा. चलो थैंक यू वासा भाई हमारे साथ मौजूद है. मैंने जिंदगी में पहली बार लव सुना दरबणा. अब इसका मतलब अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा और साथ साथ आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0333221322. ओके जी, सो नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: के रस सगड़ा
1: रुस्तम अली पार तो गलाया वो तो पुनो खान पार के सेवन शरीफा था.
0: ओके रुस्तम भा खुश आयो.
1: शुक्र आलाए कानन साहब आयो खुश आओ.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. प्रोग्राम दो प्यार रुस्तम भा.
1: जी जी प्रोग्राम दो प्यार और इतना प्यार.
0: अच्छा मुखे बुधायो तो ता जके बुधाया भी प्रोडक्ट जिन जे बारे में त उनन के इस्तेमाल कयो या सिर्फ बुधो था प्रोग्राम.
1: प्रोग्राम असां ॿुधूं पिया तव्हां जो इस्तेमाल कोन कया अथई. असां वटि मिलन बि कोन था.
0: मिलन कोन था असल मतलबु वजह इहा आहे त मिलन कोन था. चलो तव्हां अवेलेबल करायो न जेको नंबर ॿुधाईंदी आहे प्रोग्राम में उनखे कॉल करे वठोसि.
1: हुनखे कॉल कंदासीं तव्हांजे प्रोग्राम में
0: छा ॿुधण में वाकई उहे बंदि करे छॾियो. चङो यादि ॾियारायो. हा सही सही सही मोहबतूं आहिनि भाउनि जूं. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? जी जी ओके ओके थैंक यू सो मच. प्रोग्राम ॿुधो पिया. ओके जी कॉलिंग नंबर 0333221322 जिते जिते अञा ताईं ही प्रोडक्ट अवेलेबल न आहिनि थिया चाहे वाई चेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां नंबर डायल कंदा. नंबर आहे 0315799 0595. ही नंबर तव्हां लास्ट में डायल कजो तव्हांजे एरिया में बि अवेलेबल थी वञनि प्रोडक्ट. ठीकु आहे. ओके जी, सो कॉल अगर मतां थी सके तो मुंहिंजो हथु लॻी वियो हुजे असां ही वारी कॉल वठूं था ॾिसो केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: केरु असां सां गॾु आहे?
2: हाफिज़ लखमीर मोरे खां.
0: मोरे खां कॉल कई आहे लखमीर भाउ, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो?
2: अलहमदिल्ला
0: ठीकु ठाक. प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: जी जी प्रोग्राम वेट आइस ब्यूटी क्रीम.
0: वाह वाह, वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई अथव?
2: जी बिल्कुल कई आहे. असांखे हुन ॾींहुं तव्हां कलाम कोन ॿुधायो. तव्हांखे चयोसीं तव्हांखे प्रोग्राम में प्ले कंदासीं.
0: कहिड़ो कलाम हुयो ॿुधायो अॼु हलाईंदासीं?
2: इंतज़ार इहो.
0: चलो हलायूं था हिन गाने खे. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? तव्हां किरी माण्हू था न हिन करे गानो हलायां थी न त न हलायां मां.
1: वालेकुम.
0: अदा खुश आयो हाँ वाकई वाकई सही था चो मुखे बुधाय प्रोग्राम बुधो पे असो अज
1: बिल्कुल अजी बुधा तो फिर उन दफो ता के जी बुधो ता फिर दफो ता
0: पे उन दफो चलो सुठो कयो सुठो मुखे बुधाय त जेके प्रोडक्ट बुधाय थी इनन जे बारे में ता बुधो हुंदो अज ता वठंदो इस्तेमाल कंदा
1: मां जो खास शौकी ना आ बाजे पर कर और की शौकी ने
0: वो तो साबुन तो मर्द भी लगांदा है साबुन तो मर्द भी लगाए सकंदा ना क्रीम तो चलो मायू लगाइन पर मर्द तो साबुन हणी सकंदा ना तो साबुन भी आए ना
1: बस साबुन या दा बाजे सा घेरो को चेरो मामा चला फाइया जो सके जरूरत ना है
0: साबुन हण जो जरूरी ता केन दोसन के याद कंदा
1: हां दोसन याद कर रुत मली सारा दिलि जो आगर खान जमाली पपाया पीचा दे राजा हक मलिका दे वफादियत पीचा दे अमाना को सो आई सारा की बड़ी को सो आज रमजान को पांग
0: ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल करी ओके जी सो अस्मा लगारी अस सगर मौजूद है मेरे पर खास खान शो बुधी पई असा जे सोनी ए तवा भी अस्मा कॉल कयो आ त तवा जी लगी वनी आ त लाजमी कॉल कयो आ पर कॉल जे का ना जो मा सोचा पई एकड़ी भी छोकरी जी कॉल खोन आई चलो हाने जी को ना कॉल त असा थोड़ो साइड रे रखू था ए टाइम भी थी आ त असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलू था उन का पर वापसी जल्दी मोटी तवा दीदासी थोड़ी थोड़ी रेगुलर जे को ना कॉलियो भी प्रोग्राम में ऐड कंदा जी उन मानन सा भी कचारियो थी सगन जे के मानु बेचारा मैसेज ए असा के कमेंट नथा करे सगन सो प्रोग्राम तवा सबनी जो आहे जिन जो नालो आहे व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे तव्हां ताईं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां इस्तेमाल कयो पिया सोणा थियो पिया ऐं मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटावती तव्हां हिते वेठा हुजो मता काॾे विया आहियो समझो था

नहीं मैं आती हूँ आती हूँ आप लोगों की जानो, सबर करें जरा, सबको जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा बारी बारी। अगर तो वापस आ चुके हैं दोबारे से आप लोगों के पास, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। आप लोगों को याद रखने में मेरे ख्याल में जो ना वो आसानी कर सकती है कि अगर कभी मैं आप लोगों से पूछूं कि फला फला प्रोडक्ट जो है वो कौन से प्रोडक्ट है तो आप आसानी से बता सकेंगे भाई व्हाइट एश वालों के जो ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और डी स्किन में सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अभी मुझे बताइए, अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो पंहिंजे ॻोठ में बाबा अवेलेबल करायो न लाइ तव्हां डायल कयो 03 15 799 0595। ठीकु आहे।

मेरे अंदर का डीजे खुश हो गया ये गाना सुन के।

शहजाद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम दुबई. कहते हैं प्लीज प्ले फौजिया सुमरू. ओके शहजाद सोलंकी, मैं आपकी फरमाइश लगाने की कोशिश करती हूँ. और हमारे साथ मीर बेवस, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. और ये जी हमारे साथ हैं अनवर भाई, कहते हैं कैसे बदले. अच्छा कहते हैं कैसे बदले रूप गए हैं लोगों के, क्योंकि उनका खौल उतरता जाता है. तहमीदों पर उसके मैं कुर्बान जाऊं, एक भी झूठ ना उसका पकड़ा जाता है. वाह वाह वाह वाह, क्या बात है. समझ नहीं, वो अलग बात है. अच्छा ए एम अंसारी कहते हैं अपनों की दी गई अजियतें बिल आखिर इंसान को नफरत का आदि बना ही देती हैं. इंसान अपनी तोहीन माफ तो कर सकता है, लेकिन वो तोहीन कभी नहीं भुला पाता. खेडो न कमचू गालियों कया थो. बिल्कुल, कड़ी कड़ी कमचू गालियों करण जरूरी हुंदा है. एड़ी गालियों वरी कड़ी कड़ी मां भी कंदी जॾहिं कुझु पागल माण्हू जेके ईंदा आहिनि उहे वरी जॾहिं कम जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त माण्हू सोचण ते मजबूर थींदा आहिनि त हा हीउ माण्हू अहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं करे सघे थो. बिल्कुलु जी करे सघे थो. बिल्कुल, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि करे सघो था. ॾिसो था हीअ माई केॾी सुहिणी आहे, जंहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ठाही आहे, वरी लॻाई बि आहे. सो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सुहिणा थी सघो था. अनवर भाई, तव्हां टॉपिक थी चयो आहे खुद से बातें नहीं करता पर खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ. चलें ये भी अच्छी बात है. हजार भाई कहते हैं उसकी याद में दिल आज भी रोता है, जाने क्यों वो पल अब भी खूबसूरत लगता है. क्या खबर उसे मेरी बेचैनियों की, जिसका हर लम्हा उसकी यादों में खोता है. वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस. तव्हां जूं शायरियूं ॾाढियूं भलियूं आहिनि, पर अॼु अलाए छो मुंहिंजे शायरियुनि ते मूड कोन्हे. सो मथां गुज़री वञनि थियूं. और हुन खां अलावा हमारे साथ हैं जी मोलाई मुजाहिद बोज़दार. ओके जी, आप लाड़काना से में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. अच्छा भाजी सईदा जी बारे में पुछो त भाजी सईदा अलाए किथे घुमा बाबा.

जज्बाती थी वो आदमी। अरे जवान मोहम्मद बचल चंपानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं प्यारे भाई। और दर्दे दिल क्या कहते हैं, खुद से बातें करना जहनी निजाम बेहतर करता है और स्ट्रेस कम करता है, फैसले मजबूत बनाता है और जिंदगी में सुकून और यकीन पैदा करता है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए मंसारी कहते हैं सिडो इतना ट्राई किया कॉल का कि डायल करते करते अब मोबाइल भी रोई वेठिया। हाँ ये थींदो आहे कॾहिं कॾहिं, उहो एॾा सारा माण्हू ॿुधनि था पर कालियूं कॾहिं कॾहिं मतिलबु थोरनि माण्हुनि जूं लॻंदियूं आहिनि। सो ॾुख न कयो बाबा, ॾुख न कयो, नेठि त तव्हांजी बि लॻंदी, दिलि वॾी कयो ऐं हौसला बुलंद रखो। अगरि पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो, जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कयो आहे ऐं जिन जिन माण्हुनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई आहे उहे बि हथ मथे कयो, जीअं ख़बर पवे उहे सोणा माण्हू जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइनि पिया। अच्छा हज़ार खान भाई कहते हैं जो लोग खुद से बातें करते हैं ताकि अपने ख़्यालों को ठीक से समझ सकें, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या फिर बस खुद को मोटिवेट कर सकें, कभी कभी तो ये बस एक आदत भी होती है। ओके जी ओके, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। उन खां अलावा अच्छा किशोर भाई, मूंखे न कॉल जे लाइ फोर्स कयो वेंदो आहे त तव्हांखे कॉल्स वठणियूं आहिनि, मूंखे फोर्स न कयो वञे त मां ज़िंदगी में न वठंदो। अला सो ही गानो हलायो अथमि ॾाढो वी आई पी, ज़माना नाज़ुक है। अब पता नहीं ज़माना नाज़ुक है या नहीं, लेकिन ये गाना बड़ा ब्यूटिफुल है तो हम गाना सुनेंगे। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम सुन रही है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल कर रहे हैं ही नहीं बताइए तो जरा।

0: नाजुक है।
1: हाँ जी, जमाना नाजुक है और साथ साथ आप भी नाजुक हैं। अपना ख्याल रखिए और इस्तेमाल करते रहिए टी स्किन ब्यूटी क्रीम और डायल करते रहिए 03157990595। अच्छा, ये इरम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और इमरान भाई कहते हैं बाजी ही वारो गानो तो हलाए जो बाजा तो गानो हलाईंदासी बाबा सुबाणी हलाईंदासी। इरम कहती है अच्छा यार, ओके ओके ओके। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप ही सिदरा, क्या हाल है आपके? आई एम फादली लाशारी बलोच। आज सॉन्ग सुनाइएगा तकदीर ड्रामा ओएसटी लास्ट में पोएट्री के साथ, और प्रिंस मौसिन लाशारी, इम्तियाज हुसैन, हसन लाशारी, आई अगते तां सबनी छोकरिन के डेडिकेट करे सडी वाइस। सो थैंक यू सो मच। ए भी रिंद हमारे साथ, डियर घर वाले तो कुछ नहीं कहते, ये सजा मुझे घर वाली की तरफ से मिलती है। भाभी मतलब तांगे बेजार करे रखियो, भाभी न क्यों ये बाबा
2: अकेली कहीं मत जाना,
1: समाना नाजुक है,
2: समाना नाजुक है।
1: अच्छा फायज अली जो गानों भा हलाए सजो सी न तांजे लाए जरूर हलायो। हाँ साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माय बेस्ट आरजे सजो, कैसी हो अब, सेहत तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ। और साइमा मीर कहती है शो मस्त है सफा, मस्त मुझे निगहत चाहिए वो भी आपके शो में, जल्दी लेकर आओ टॉपिक शुक्र है। मैं तो बहुत करती हूँ बातें, ये आदत मुझमें बचपन से है, और खुद से बातें करता है ना जो भी वो स्ट्रांग जहीन और प्यारा होता है। ये अपनी तारीफ कर रही, ये बंदी अलग ही लेवल की है भाई, बहुत बढ़िया लगे रहो। वैसे अच्छी बात है ना, जो लोग खुद से बातें करते हैं, मतलब उन्हें मानन के यहाँ तक खबर होंगी आ तो जगह गाल मतलब असा पान सा करना है, वो कहीं बे सा शेयर करनी जरूरी ना है। आई वाकई गाल डिठो वे तो कैसा बे सा शेयर करना जरूरी ना है होंगे। अजकल जो दौर हले पे हो ना, तो गाल कैसा शेयर छा कैसा गाल करो तो बेहतर।
2: अकेली कहीं मत जाना, जमाना नाजुक है, लोगों जमाना नाजुक है।
1: ये बात जरा हजम नहीं हो रही है, जमाना और नाजुक ना बाबा ना। और ये हमारे साथी जी दुनिया जी ना ही परवाह, सिस्टर तुंदे खेर हो जे, कैसी हो सरदार हाजी? एन हमारे साथ मौजूद है सरदार भाई, तवां के चौं था भली करी आया। और शोनी कहती है मैं भी आ गई आपी, जी बिल्कुल आप हमारा शो एंजॉय करें और थैंक यू सो मच, वो तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के पास ना जरूर जाइएगा। और ये कहते हैं बाजी सलाम देता हूँ नबन खान जागीरानी, मोहम्मद खान जागीरानी, सनाउला जागीरानी को, इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अली खखरानी हमारे साथ ही लाड़काना से, अदी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपके साथ प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वेरी नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारी भाई। और ऐसे जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोग्राम भाई आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं रोजाना 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, मैं आप लोगों का खूब सर खाती हूँ। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं और सुन सकते हैं उन तमाम प्रोडक्ट के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो चाहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को प्रोग्राम में बताए जाते हैं तो थोड़ा सीरियसली आप सोचें इनके बारे में, इस्तेमाल करना शुरू करें। वैसे भी आप लोगों की स्किन जो होती ना, यानी कि प्रोडक्ट उनको चाहिए होते हैं, तो स्किन के ऊपर अगर आप कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट लगाएं जो कि आप लोगों की स्किन को खराब कर दे, उसे कई गुना बेहतर नहीं कि आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि आप लोगों की स्किन का ख्याल रखें, आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करें और आप लोगों की खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखें। तो बिल्कुल जी आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप ट्राई करके देखिए, आपको मजे आ जाएंगे।

ओगिटी एसन और बानी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट में आए जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। लुबी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम लुबी, कहती तमाम बेहतरीन शो और ब्यूटीफुल भी आपकी तरह। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी लुबी। अच्छा, अल्लाह दाद गोरचानी हमारे साथ मौजूद है। नवाब शाह से तव मौजूद आए, सो मोहबतू आई तुम प्रोग्राम बुध।

अच्छा ए मन सारी कहते मां भी ढीठ हा फ्री सर्विस ते सोचिंग नम वाइटेश वारन के मुजो मैसेज पढ़ाई जो ता यो मैसेज जको ना जको नंबर ता के

अच्छा किशोर भाई कहते हाँ हाँ असा गजनी ना असा के खबर आस वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो बुधू पाया मत गाल विसरी वे तीन बुधाई अच्छा जी कॉल से मान पुछंदी तो वो गजनी थी वेंदा तीन अच्छा हजार भा तुम मोहबतू आए अमानुल्ला टगर बहुत शुक्रिया इंतजार मौत बराबर जो लगे बना ताले हाँ जी बिल्कुल एक में भी तन्हा थे सो में भी अकेले हैं और डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले मोहम्मद समान भाई आपका बहुत शुक्रिया एम कहते हैं कि टॉपिक पे कहूंगा कि हमें पहले देखना ये है कि हम रहते किस मुल्क में हैं पैदा होते ही हमें वो चीजें मिली एग्जैक्टली शायद आप सही हैं वैसे ऐसी बातें बताई नहीं जाती बंदा नजरों में आ जाता है तो हाइट रखें खुद को अच्छा उनका अलावा जिको आप टाइम थियो आ हाने तवा का इजाजत वठण जो सो वरीन सले तवा से मुलाकात थिन वारी आ है मुजी सुभाणी वारे प्रोग्राम में 1 बजे खान 3 बजे तई तवा जो संजो साथ रहंदो आ है प्रोग्राम वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो में पांजो ओही दूसरो ख्याल रखंदा

करे छी ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराग़ी चयो आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआहिदो थी सघे थो। मुआहिदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशह जीअं अबन हुरमस ते लटकंदी रहंदी। ॿिनि सुपनि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। अबन हुरमस जो इंतज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो, जंहिं बाबति तेहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद करण जो पाणी जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। काज़ी अहमद जे मीर रुकन शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतजाज। जातीअ जे सामूली पटी में पाणी जे सख़्त खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं मुख़्तलिफ़ तनज़ीमनि तरफ़ां एहतजाजी जलूस कढियो वियो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

तगवाणी भरसा बाली उरड़ी पगे फोत गोठ सुबह साधक कोसो में सतन वरियन की बिस्मा लाशारी उरड़ी पगे फोत थी वही गोठान पारा डॉक्टर जो टीमू मोकलण जो मुतालबो।

कराची में रोल कुतन जो राज कुतन जो लड़ल वधिक एक शख्स रबी सबब फोत शहर में रबी सबब फोत जो अंग वधी 14 थी वयो जना अस्पताल इंतजामिया मूजिब पंज तलिन शख्स के कुतन डाड़ियो हो जै वैक्सीन न कराई हुई है जो रबी सबब फोत थियो आहे शहर में रबी सबब फोत जो अंग वधी 14 थी वयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-0003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: मेरा व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

वफाकी बजट पगारदार सनतकार एक्सपोर्टर्स लाए आए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाने वाले ममलकती वजीर बिलाल अजरकियानी तो समूरन शोबन ता बार घटाने की कोशिश कई है। बजट पैंजो घर टाइन बजट है। घट पगार खड़न ता गुजरियल साल ही टैक्स घटाया हो, इन भेरे पर रिलीफ दिनो है। व्यापार एक्सपोर्टर्स शिपिंग इंडस्ट्रीज ता भी टैक्स घटाया है। बजट से सनतन के हथी मिलने से गडोग रोजगार जरिया भी पैदा थन्दा।

0: अपोजिशन जी हुकूमत के गॾिजी मामलन के अॻिते वधाइण जी आज क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद खान अज़गज़ई चयो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआहिदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिकु ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानी ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिकु ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानी सां मुलाक़ात थींदी, छा थींदो।
1: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह है, तारीख के और आप गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मंच की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को टुकड़ा दिया गया, लेकिन एज अ चेयर इट इज नेवर टू लेट, आए बैठे मैं बातचीत के लिए तैयार।
0: मिकबेरो ॿीहर अपोजिशन खे मिसा के मैशत मिसा के जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु भाइर आहिनि, को बि जहिड़ो नाहे। पहिरियां बि अपोजिशन लीडर जी हैसियत में मिसा खे जमहूरियत ऐं मिसा खे मैशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़लूस ते ॿधल आज खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनि सूबनि जी जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमुन लाइ ॾींहं राति कम कनि पिया। सदन ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बाननि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो कौमी असेंबली में गलाइंदे बैरिस्टर गोहर चयो सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम इंदो।

0: 这买儿子呢？买儿子呢？买买这么大，那阿比阿姐，那不能开阿姐呀？मेरा इनसे बहुत भाई वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ जहाँ अपोजिशन मेंबर्स की आवाजन से दिलचस्प जुमला सनाउल्ला मस्ती खेल के वापस अचान की बतावत दी छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के बिसारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अस्कर के दोस्त करार दिनों। शहबाज शरीफ चो सनाउल्ला मस्ती खेल वापस अचान चाहे तो, पर कुछ मसला अथसि।

0: एफबीआर मां सिफारशी कल्चर खे ख़तम करे छॾियो आहे। एफबीआर में अरबे रुपियनि जी करप्शन हुई। रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपियनि जो खपलो हो। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातारण पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त पघारदार शख़्स शुगर इंडस्ट्री जो बार छो खणे। सुधारा करे खंड जी सनत मां टैक्स चोरी रोकी, 60 अरब रुपया वधीक टैक्स हासिल कयो। माज़ी में मुल्की डिफॉल्ट शर्तूं लॻियूं हुयूं। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तक़ामादो जेको अॻिते वधी रहियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300385569।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM
1: 94 शिकायत फरमाइश कोशिश कभी तो पूरी करी।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फॉरेन एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज का भी टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतन के हथी मिलण सां गड रोजगार जा जरिया भी पैदा थींदा। अपोजिशन की हुकूमत के गडजी मामलों के अगते वधाने की आछ। कौमी असेंबली में बजट ते गालाइंदे महमूद खाना जगजई चौथा गलतियों के सुधारे सकजे तो शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक माहदो करे जी सियासी जमातू एक बे जू टंगू न चिकन। फेडरेशन सूबन के पैसा डींदी है अवा सूबन का वरता है। पीटीआई बानी ते एतरी सख्ती न कयो एक बे के जेलन में विझण से कुछ न थींदो। पीटीआई बानी से मुलाकात थींदी छा थींदो।
2: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह है तारीख के और आप गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ चेयर इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोजिशन के मिसा के मईशत ऐं मिसा के जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु भाइर आहिनि। को बि जहिड़ो नाहे, पहिरीं बि अपोजिशन लीडर जी हैसियत में मिसा के जमहूरियत ऐं मिसा के मईशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुरूस ते ॿधल आछ खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जी हिकु जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम करे रहिया आहिनि। सदन ख़िदमतनि ऐं कुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी सां मुलाकात करण जो मुतालबो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेकाम सां ई मुआशी इस्तेकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझु बि नाहे, न बिजली जी क़ीमत घटि थी, न ई लोड शेडिंग ते फ़र्क़ु पियो आहे, न ॿियो कुझु सस्तो थींदो।
2: मैं तो खत्म करा लूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाई वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जा अपोजिशन मेंबर से आवाज़न ते दिलचस्प जुमला। सनाउल्लाह मस्ती खेल के वापस अचण की भी दावत दई छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की भी सारा अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई के भी दुरुस्त करार दिनों। शहबाज शरीफ चयो त सनाउल्लाह मस्ती खेल वापस अचण चाहे तो पर कुछ मसला अथसि।

0: एफबीआर मां सिफारिशी कल्चर के खत्म करे छो है। एफबीआर में अरबे रुपये की करप्शन हुई, रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपये जो घपलो हो। सुद सभा वारे वफाकी वजीर तौला तारण पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो है पगारदार शख्स शुगर इंडस्ट्री जो बार छो खणे, सुधारा करे खंड की सनत मां टैक्स चोरी रोके 60 अरब टैक्स हासिल कयो। माजी में मुल्की डिफॉल्ट ते शर्तू लगी हुई, मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेकाम आंदो जो अगते वधी रहो है। तेरह सौ अरब टैक्स में 1100 अरब रुपया रुगो कराची में गड थींदा आहिन। कराची के रस्तन की हालत खराब है, 18 साल का सिंध ते करप्ट हुकूमत कायम है। कौमी असेंबली में बजट में गालाइंदे एमक्यूएम अगवान फारूक सत्तार चयो है त वजीर आजम की तकरीर में कराची जो जिक्र ही ना है। शहरन के सीधी रीत फंड डिना वन 2100 अरब सिंध के डिना पा वन, पैसा सिंध के मुख्तलिफ शहरन के मेयर्स के डिना वन। 26 ऐं 28 तरमीम के सपोर्ट कयो, असाजी वारे ते रेड लाइन अची वही, मकानी इदारन के खुद मुख्तार बनाणो पवंदो, रुगो कराची न पर समूरन शहरन के सीधी रीत फंड डिना वन। ईरान अमरीका से शुरुआती मुआदे से इतफाक थे तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्षी है अमरीका से डी बिन में मुआदो थी सके तो मुआदे से सही डिजिटल क्यों वेंदूं, असाजी तलवार हमेशा जिया अपना हुरमुस से लटकंदी रही। बिन सफन से बदल मुफामती यादाश्त है जैसे बिन महीनों तीन गालू रही अपना हुरमुस जो इंतजाम माजी का मुख्तलिफ हों जै बाबत तेहरान जो फैसलो हतमी है। नायब वजीर आजम ए परदेही वजीर इसहाक डार जो मिस्री परदेही वजीर से टेलीफोनिक राबतो, इसहाक डार ए बदर अब्दुल आती विच में खिते की सूरतहाल से गालू थी। बिन्हीं अगवाणन पारा खिते में अमन इस्तेकाम लाए जारी सिफारती कोशिशन की वाखाण, सूरतहाल से राबतन में भी रहने ते इतफाक। ईरान ए अमरीका के मुआदे से पहुंचने वाली खबर बाद आर्मी मार्केट में तेल सस्तो थी वो, तेल के अघ में 6 डॉलर ताई की लात, फी बैरल 87 डॉलर थी वो। अमरीकी कच्चो तेल भी सस्तो, फी बैरल 84.88 डॉलर में विक्रो थे लगो। आलमी मार्केट में तेल जो कीमतू तकरीबन 3% ताई घटी आन। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन, 21 दहशतगर्द मारजी विया। 3 दिन दौरान फोर्सेस के ऑपरेशन दौरान मारजी वियल दहशतगर्द जो अंग 48 थी वो। आईएसपीआर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस गुजी इतला ते मीरान शाह ए भर पासे में ऑपरेशन कया जै दौरान 21 दहशतगर्द मारजी विया। 72 कलाक दौरान ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द के 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारजी विया। इलाके में क्लियरेंस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंगी, राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 0320180003।
4: जा उम्मीद के दिए जलते हैं।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।

0: सो लिसनर्स बिल्कुल प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में वंस अगेन बाबर शेख हम असां गॾु आहे ऐं स्टूडियोज़ में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब ऐं असांजो अॼु जो टॉपिक आहे इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट. मां सर ने प्रोनाउंस सही नथो कयां, सो लिसनर्स ब्रेक ते वञण खां पहिरियां मूं ॻाल्हि कई त कॉग्निज़ेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस ते असीं ॻाल्हाईंदासीं सेक्शन 4 ते. पर शहबाज़ साहब हिन तरफ़ अचण खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां असांखे जेके टे टर्म्स आहिनि अवां यूज़ कयूं पंहिंजे गुफ़्तगू में, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया ऐंड प्रोपर्टी ग्रेबर, इन ते थोरो डिफाइन कंदा, छा इहे हिकिड़े ई टर्म यूज़ पिया कयूं टे या टे इंडिविजुअल्स आहिनि?
1: इहे इज़ अ टाइप ऑफ सिंडिकेट, इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इलीगली एक्वायर द प्रोपर्टी ऑफ समवन.
0: ओके,
1: माना उहो ग्रुप, उहो माण्हुनि जो हिकिड़ो जथो हुजे जेके हैबिचुअली या पैसा वठी करे या पाण मिली करे कंहिंजी प्रॉपर्टी ते कब्ज़ो करे छॾनि लीगल तरीक़े सां, या कंहिंजे पैसनि जे थ्रू या कंहिंजे चए ते कंहिं माण्हू खे बेदख़ल कराए छॾनि. सो इहा हिकिड़ी टर्म आहे, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया, प्रॉपर्टी. इन जो सिर्फ़ु ऐं सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे कि कंहिं बि माण्हू खे उन जी राइटफुल ओनरशिप तां या जेको बि अगरि लॉफुल ऑक्यूपायर आहे उनखे बेदख़ल करे उनखे जेको आहे न पंहिंजे कब्ज़े में आणे
0: छॾणु.
1: दिस इज़ अ सेम टर्म, हिकिड़ो सिंडिकेट तां लफ़्ज़ यूज़
0: करे सघो था. सो सर सेक्शन 4 ते अचूं पिया, कॉग्निज़ेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस ते. अवां ॿुधाईंदा त इन सेक्शन तहत कोर्ट जेकी आहे कहिड़ी बुनियाद ते कॉग्निज़ेंस वठी सघे थी. अच्छा, इन तरफ़ हलण खां पहिरियां लिसनर्स तव्हांखे मां लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां, 03000113488. इन गुफ़्तगु जे दौरान ई तव्हांजो लाइव कॉल्स प्रोग्राम में असां इंक्लूड कंदासीं. तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी सघंदव. 5:39 टाइम थियो आहे ऐं प्रोग्राम मां बिल्कुलु लाइव ॿुधी रहियो आहियां. जी शहबाज़ साहब,
1: कॉग्निज़ेंस बाबर असां वटि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डायरेक्ट कंप्लेंट जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे.
0: ठीकु आहे,
1: जेके अंडर सेक्शन 200 जे तहत इहा डायरेक्ट कंप्लेंट ईंदी आहे. असां कंहिं बि सेशन कोर्ट में असां इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी कंप्लेंट दाख़िल कंदा आहियूं अगेंस्ट द पर्सन हू हैज़ डिस्पोज़ेस्ड वेदर लॉफुल ऑनर और द लॉफुल ऑक्यूपायर. सो जॾहिं उहा कंप्लेंट वेंदी आहे त सेशन जज उन कंप्लेंट ते नोटिस वठंदो आहे.
0: सही.
1: सो अंडर सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डायरेक्ट कंप्लेंट इज सबमिटेड बिफोर द सेशन कोर्ट.
0: अच्छा, छा हिन एक्ट में ट्रायल तरीक़ो आम सिविल केसिस खां मुख़्तलिफ़ आहे?
1: न, हिन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो एप्लीकेशन हिते अप्लाई थो थिए पियो सॼो CRPC, छोकी प्रोसीजर असांजो उहो एडॉप्ट थींदो न सॼो.
0: ठीकु आहे सर. सो हींअर असीं कॉलर जी तरफ़ हलूं था. फर्स्ट कॉलर मौजूदु आहे न. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अदा अलहमदुल्ला. अदा केरु था ॻाल्हायो? जी जी अदा, प्रोग्राम ॿुधो पिया, कहिड़ो सवाल पुछणु चाहींदो? जी सॉरी अदा, मां सम्झियुसि कोन, ॿीहर ॿुधायो. जी जी लीज़ ते. ठीकु आहे, शिवा साहब सम्झो तव्हां हिन जी ॻाल्हि.
2: Hello?
0: जी रिपीट कंदा, लीज ते तव्हां चयो पिया ज़मीन तव्हां वटि आहे अॻिते. या तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी शायदि शहबाज़ साहब सां. सर लीज़ ते प्रॉपर्टी
1: थोरो लीज़ ते वरिती वञे, ॿ धुरियूं पाण में.
0: जी जी जी,
1: लीज़ समथिंग डिफरेंट आहे. लीज़ ते बि अगरि लीज़ जो बि अगरि असां कॉन्सेप्ट खणूं त लीज़ जो बि ईअं ई हूंदो आहे त कंहिंखे सिर्फ़ु असां परमिट ॾींदऊं त कंहिं शइ खे यूटिलाइज़ करण जो. पोइ लीज़ ते बि अगरि वरिती आहे को हुनखे बेदख़ल करे थो पियो, उहो बि लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट में अचे थो.
0: अच्छा शहबाज़ साहब, हिन खां अलावा थोरो टॉपिक खां अलावा हिकिड़ो सवालु अचे पियो मुंहिंजे ज़हन में त अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया त कुझु हाउसिंग स्कीम्स अहिड़ियूं आहिनि या कुझु प्रॉपर्टीज़ अहिड़ियूं आहिनि जो ॿिनि पार्टीज़ वटि रजिस्ट्रीज़ आहिनि, जंहिं वजह सां हुननि जा जेके आहिनि मतिलबु इलाही पुराणा जहिड़ा हलनि था पिया. इन खे कीअं पिया ॾिसो?
1: This is a total different case from the
0: illegal disposition. जी इन खां पूछो त इन खां बिल्कुल डिफरेंट हटी करे सवाल पिया
1: कयां. आहे त इशू सिविल प्रोसीजर कोड.
0: जी जी,
1: सॼे जा सॼा प्रॉपर्टी सां रिलेटेड जेके बि इशूज़ हूंदा आहिनि, पार्टीशन ते हुजनि, डॉक्यूमेंटेशन ते हुजनि, कैंसिलेशन ते हुजनि, स्पेसिफिक रिलीफ एड जा हुजनि, मिसाल एग्रीमेंट सां रिलेटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट सां हुजनि, इहे सॼा सॼा जेके कॉन्ट्रेक्ट हूंदा आहिनि इहे सॼा केसिस रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर कोड.
0: ऑलराइट,
1: हाणे असां छा कंदा आहियूं, हाणे लाज़मी आहे कंहिंखे केस में इन्वॉल्व करण जे लाइ कोई न कोई हिकिड़ी पार्टी को अहिड़ो रीज़न ॼाणाए छॾंदी आहे त हुनखे एम्बिट में खणी ईंदी आहे इलीगल डिस्पोज़िशन जे. छोकी हिन एक्ट जो सिर्फ़ु पर्पज़ इहो हुयो त क्विकली रिलीफ ॾियो, जेतिरो थी सघे कंहिं बि माण्हू खे अगरि कंहिं बेदख़ल करे छॾियो आहे त हुनखे क्विकली रिलीफ कीअं ॾियूं त हुनखे वापसि हुनजी प्रॉपर्टी में रीस्टोर कराइण खे पोज़ीशन वापसि ॾियारियूं। हाणे इन जे करे त ज़्यादातर माण्हू छा कंदा आहिनि, हेॾे मूव घणो कंदा आहिनि त इलीगल डिस्पोज़ीशन जे अंदरि हलिया ईंदा आहिनि त जीअं असांखे क्विकली रिलीफ मिली सघे।
0: सो
1: हिन जा बि पंहिंजा हिकिड़ा प्रोसीजर ऐं तरीक़ा आहिनि जेके हिकिड़ो सेशन जॾहिं अडॉप्ट कंदो आहे उनखां पोइ वञी हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾींदो आहे, क्योंकि हे ॿ शयूं अलॻि अलॻि माना डिफरेंट
0: तरीक़नि सां कमु कंदियूं आहिनि। So, caller, ekdo bhi maujood hai. Let's see.
1: Please, please.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, Babar bhai. Aapne jo baar bandro, kal ko sala par gula fakar rahe hain.
0: Ji, ji, ada.
2: Ye sanga, ki sala rahe sala, agar koi garib manwa ko gothan wa vekhala sarkari wali ne unhe ke sadan ka vekhala unhe ke de dakhal kare to unhe ke bare mein to jo kanun chap kare.
1: कची आबादी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी
0: मां
1: प्रीवियस पाण टॉपिक कयो से स्टेट इज अ मदर, ठीक है ना। स्टेट जो काम आ प्रोटेक्शन कर, फूड प्रोवाइड कर, शेल्टर प्रोवाइड कर, डिस्कस कयो से। सपोज हाँ मानू 40-40 साल वेठा, टीह जनरली था गलाय 30-40 साल वेठा, 25 साल वेठा, अगर वो गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी वेठा तो गवर्नमेंट सब का पैर उनके फैसिलिटेट करें। हाणे मिसाल हाणे ऑल ऑफ सडन अगरि गवर्नमेंट सॼा रिकॉर्ड खणी ईंदी, घरनि जा घर जेको आहे न छा चवंदा आहिनि ड्राए छॾंदी, अल्टीमेट नुक़सानु आवाम खे ई थींदो। जॾहिं त स्टेट हूंदी आहे आवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ, अगरि सपोज़ वेठा आहिनि सालनि जा साल वेठा आहिनि, वेठा त ग़लति तरीक़े सां, छो की ओनरशिप आहे न, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जी आहे। पर मां हिते रिक्वेस्ट कंदुमि की अगरि ईअं बि अगरि को गवर्नमेंट स्टेप खणे थी पई, सभ खां पहिरियों हुनखे रिहेबिलिट करे, हिननि खे पहिरियों हिकिड़ो स्पेसिफिक जॻहियूं ॾे, उनखां पोइ वञी करे उन प्रॉपर्टी खे जहिड़े बि तरीक़े सां इस्तेमालु करे।
0: सही। ऐं सेकेंडली सर, तव्हां ॾिठो आहे हिते अहिड़ी प्रॉपर्टी जेके न सेल परचेस बि थींदियूं आहिनि, पोइ अक्सर कुझु केसिस मूं अहिड़ा ॾिठा जो जीअं पार्टी इहो परचेस कयो त विद इन वन मंथ जेको आहे न उनखे गवर्नमेंट जेको आहे त उनजी प्रॉपर्टी
1: डिमांड नोटिस वठी छॾंदा आहिनि, हुनखे रजिस्टर न कराईंदा आहिनि। डिमांड नोटिस जेको आहे न सेल ऐं परचेज, मूं वटि बि हिकिड़ो केस आयो हुयो त हिकिड़ो भाउ ॿिए भाउ जे मथां इहो ई केस करणु चाहे पियो, त मां हुनखे चयुमि त तव्हां क्लेम कीअं कंदो, तव्हां त कची आबादी थियो, छा तव्हां डिमांड नोटिस बि अवेलेबल आहे जेको शो करे त तव्हां रियल ओनर हो ऐं तव्हां गवर्नमेंट खां इहा शइ लीज़ ते वरिती आहे। उहा हुननि वटि न हुई। तव्हां केस कंदो, केस कंदो पहिरियों त गवर्नमेंट तव्हां खां ई पुछंदी त तव्हां कहिड़े कैपेसिटी में हिन जॻह
0: ते
1: इन में इहो आहे त अगरि सपोज़ को वठे बि थो त कोशिशि करे डिमांड नोटिस ते या कोई बि कची आबादी स्कीम आहे उन ते पाण खे रजिस्टर कराए छॾे। बाबर सभ खां पहिरियों सिग्नल जो ॾाढा इशू आहे। मां पर्सनली चवां थो, मां जेकी सिम्स यूज़ थो कयां पियो उन में हिकु या ॿ काल पहिरियों ड्रॉप थींदियूं आहिनि, पोइ टीं काल ते देन सो सिग्नल ते इशू
0: जो ड्रॉप में असां
1: माज़रत ई करे सघूं था, हाणे सिग्नल ड्रॉप थी थिए, सम्झी नथा सघूं असां।
0: सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर आहे, अस्सलाम वालेकुम। अदा केरु था ॻाल्हायो, सवाल पुछो पंहिंजो। अगेन ड्रॉप थी चुकी आहे, लास्ट कॉलर शामिल करे असां टॉपिक जी तरफ अचूं
1: पिया।
0: सो लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: हां सैया
0: जी, जी अदा केरु था ॻाल्हायो भा?
3: मां चयो मामन सर सदा पटा।
0: ओके, सवाल पुछो पंहिंजो।
3: सवाल ई हो बहुत दूर पास में मार का नोज में न कोल के ओदन मौ
1: एक हिकड़ो बाबर कम कयो इन्हनि खे तव्हां मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾिजो सालिया पड़ सां ई तालुक रखनि था ॿिए भली मूंसां इंडिविजुअल लेवल ते ॻाल्हाए छॾनि थी सघे थो मां हिननि जो प्रॉब्लम हिननि खे हिन जो सोल्यूशन हिननि खे ॾेई छॾां अदा मां नंबर रिपीट करे छॾंदुमि लास्ट में तव्हां जेको आहे न उहो नोट करे छॾिजो तव्हां पोइ मूंसां बाद में ॻाल्हाए सघो था पिया असल में सवाल हिते ई ड्रॉप थो थिए हिते
0: So, शेवा साहब टॉपिक जी तरफ़ अचूं पिया सेक्शन 5 इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर तहत आहे ऐं हिन सेक्शन तहत जेको आहे त इन्वेस्टिगेशन थिए पई बुनियादी पर्पज़ छा आहे हिन सेक्शन तहत इन्वेस्टिगेशन जो
1: कॉग्निज़ंस ते अचूं सेक्शन 4 में कॉग्निज़ंस सां पुछियो जज साहब पहिरियों त कोर्ट कहिड़ी में वेंदो कोर्ट सेशन कोर्ट जेकी बि इहे केसिस वेंदा आहिनि डायरेक्ट कंप्लेंट जा इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट में जेकी जुरिसडिक्शन आहे उहा सेशन कोर्ट वटि आहे सेशन कोर्ट छा कंदी कॉग्निज़ंस वठण खां पोइ ॿ कम कंदी पहिरों कंसर्न एस एच ओ हद जे एस एच ओ खे डायरेक्शन ॾींदी त रिपोर्ट्स ठाहे खणी अचो जेकी कंप्लेंट थी आहे वाक़ई जाइज़ आहे या न आहे हाणे पुलिस छा कंदी पुलिस कंप्लेननि खे घुराईंदी पुलिस कंप्लेनर जे विटनेसिस खे घुराईंदी पुलिस हुन खां जेके लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ आहिनि उहे घुरंदी प्लस में इंसिडेंट जिते थियो आहे जंहिं जॻह ते पुलिस वञी करे उते सॼी इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी करे विद इन 15 ॾींहनि जे अंदरि कंसर्न हद जे जेको बि जज साहिबु आहे उन्हनि वटि खणी वेंदी ॿियो जज साहिबु छा कमु कंदा ऑनरेबल सेशन कोर्ट छा कमु कंदी पंहिंजे ई हद जे इंक्वायरी कंडक्ट करण जे लाइ रेवेन्यू ऑफिसर खे मतिलबु रजिस्ट्रार खे मुख़्तियारकार खे असिस्टेंट कमिश्नर खे डायरेक्शन ॾींदी त तव्हां इंक्वायरी कंडक्ट कयो जेकी इहे प्रॉपर्टी क्लेम करनि था पिया छा इहा प्रॉपर्टी ते सिचुएटेड आहे छा इहे हुन जा मालिक आहिनि ॿियो पंहिंजे लेवल ते पंहिंजी कैपेसिटी ते इंक्वायरी कंडक्ट करण जे लाइ कोई बि हिकिड़ो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करे सघे थी जेको इंक्वायरी रिपोर्ट ठाहे करे विद इन 50 डेज़ में सेशन जज खे सबमिट कराईंदो सो इन्वेस्टिगेशन ऐं हिन जो पर्पज़ सिर्फ़ु इहो आहे त जेकी डायरेक्ट कंप्लेंट आई आहे असां वटि इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी छा हुन जी फुटिंग आहे या न आहे छा हुन में जेके फैक्ट्स ऐं फिगर ॾेखारिया विया आहिनि छा उहे वाकई रिलायबल आहिनि जिन जे मथां कॉग्निज़ंस वठी सघिजे ठीकु ऐं उनखां पोइ इन्वेस्टिगेशन जीअं रिपोर्ट पेश थी वेंदी त जज साहिबु छा कंदा डे टू डे हाणे इलीगल डिस्पोज़िशन पूरे हुन में लॉ में वाहिद हिकिड़ो एक्ट आहे जंहिंमें कोई बि एजरमेंट न आहे डे टू डे माना जीअं रिपोर्ट पेश थी वई इंक्वायरी रिपोर्ट ऐं पुलिस जी रिपोर्ट जीअं अची वई प्रूफ थी वियो प्राइमा फेशिया अची वियो ऐं जेको आहे न मेलाफाइड ज़ाहिर थी वियो सपोज़ त जज हुन ते एक्शन खणंदो ऐं हिन ते छा कंदो डे टू डे कारवाई मतिलबु ट्रायल शुरू करे छॾंदो कॉपी सप्लाई थी वेंदियूं अक्यूज़ पर्सन्स अची वेंदा हुननि जा पंहिंजो छा चीफ रिकॉर्ड थींदो ऐं प्लस में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदी सॼी ठीकु आहे कंहिंजी कंप्लेनर जी जंहिं डायरेक्ट कंप्लेन दाख़िल कई आहे हुनजो चीफ ऐं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदो एजरमेंट न आहे ॾियणी विद इन 60 डेज़ में तव्हांखे जेको आहे न पूरो जो पूरो ट्रायल कंडक्ट करणो आहे अगरि गुंजाइश पइजी थी वञे एजरमेंट ॾियण जी चवनि था त 7 डेज़ खां माना लिखियलु आहे लॉ में लिखियलु आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 7 ॾींहं बाक़ी अदर गुंजाइश न आहे उहा बि कॾहिं रेयर केसिस में रेयर केसिस में हाणे रेयर केस कुझु बि थी सघे थो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसिस असां लफ़्ज़ यूज़ कंदा आहियूं उन खां अलावा बाक़ी विद इन 60 डेज़ में तव्हांखे सॼो जो सॼो जेको ट्रायल आहे उहो कंक्लूड करणो आहे अगरि कंप्लेंट एंड मेलाफाइड अगरि अक्यूज़ जो साबित थी थो वञे त हिननि खे डिस्पोज़ कयो आहे इलीगल तरीक़े सां त जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि त 10 सालनि ताईं अप टू 10 सालनि ताईं सज़ा आहे न त डिपेंड अपॉन द जज खे उहो 3 साल जी सज़ा ॾिए 4 साल जी ॾिए उन्हनि जे मथां आहे प्लस में फाइन ऐं मथो कंपनसेशन अंडर सेक्शन 546A पर प्रोवाइडेड दैट हिकिड़ी शइ हिन में हिकिड़ी ॿी बि आहे अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो सभु कुझु कूड़ो थी वियो ऐं प्रूव न करे सघियो त हिननि मूंखे डिस्पोज़ कयो आहे छोकी ईअं न आहे त सिर्फ़ु अक्यूज़ पर्सन जे लाइ ई इलीगल डिस्पोज़िशन आहे छोकी माण्हू कॾहिं कंहिंखे फसाइण जे लाइ बि लाभ दाख़िल करे छॾंदा आहिनि केस हाणे इन सूरत में पूरी जी पूरी कंप्लेंट फॉल्स निकिती फ्रिविलस निकिती ठीकु आहे हाणे जज छा कंदो उहो सॼो जो सॼो जेको बि फाइन आहे हिते त छा हुयो सज़ा बि हुई हाणे कंपनसेशन बि हाणे जज हुन जे मथां पेनल्टी हणंदो कंप्लेंट जे मथां 5 लख तूं हाणे अक्यूज पर्सन खे भराए ॾींदे अच्छा तूं हिन जे ख़िलाफ़ु ग़लति केस दाख़िल कयो आहे सो मां ॿुधाइण वारनि खे इहो चवणु चाहींदुमि ॾिसण वारनि खे बि चवणु चाहींदुमि त इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जे तहत अगरि तव्हां अचो था पिया त कंप्लेनन खे इहा ज़रूरु ख़बर हुजे अगरि मां साबित न करे सघियुमि त मुंहिंजे मथां 5 लख जो फाइन लॻी सघे थो पियो 5 lakh जी पेनल्टी लगे सकदी जेकी मुखे अक्यूज पर्सन के देनी हुंदी
0: साबित करण लाइ सर एविडेंसेस
1: एविडेंसेस मां छा चम हर ला बिनन जे लाइ हुंदो जी जी जी सिर्फ हिकड़े जे लाइ न हुंदो बिनन जे लाइ हुंदो
0: सर सेक्शन 6 पावर टू अटैच प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अटैच करण जो मकसद इन ते थोड़ो
1: हाणे इहो इंटरेस्टिंग आहे प्रॉपर्टी अटैच केयर कंदो हिकड़ी प्रॉपर्टी आहे खाली पई आहे सालनि खां वठी करे नो बॉडी इज़ क्लेमिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी ठीकु आहे ऑल ऑफ सडन ॿ धोरियूं अची वियूं साईं हीअ त असांजी आहे हिकिड़े चयो हीअ मुंहिंजी आहे हाणे सिविल लिटिगेशन में वञणु नथा चाहिनि हाणे हुननि हिकिड़ो केस दाख़िल करे छॾियो साईं हीअ प्रॉपर्टी असांजी आहे हिननि छा कयो आहे असां हिते कमकार मरमत जेकी बि मरमत करायूं पिया कंस्ट्रक्शन जो कमु करायूं पिया असां बीठा हुयासीं अंडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हे चार माण्हू आया असांखे ॿाहिरि फिटी करे छॾियनि असांजो सामान कढी करे असांजा मजदूरनि खे असांखे असांजो कंस्ट्रक्शन सामान ॿाहिरि फिटी करे छॾियनि ठीकु आहे या ताला भञी करे अंदरि दाख़िल थी विया माना क्रिमिनल ट्रेस पास असांजी एब्सेंस में क्रिमिनल ट्रेस पास कई अथनि हाणे इलीगल डिस्पोज़िशन जो केस दाख़िल करे छॾियनि हाणे जज साहिबु असां प्रीवियस वञूं था इन्वेस्टिगेशन ते इंक्वायरी ते सेक्शन 5 में अगरि असां ईंदासीं ॿीहर हाणे जॾहिं पुलिस जी रिपोर्ट ऐं इंक्वायरी रिपोर्ट जॾहिं ॿई पेश अची वियूं साम्हूं ऐं इहो डिक्लेयर थी वियो जज साहिब खे जॾहिं हुन ऑन रिकॉर्ड जेको अवेलेबल पियो आहे मटीरियल ऑन रिकॉर्ड हिन में हिकिड़ो लफ़्ज़ प्राइमा फिशाए मां हिन करे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो हुनजो हिसो आहे हिन जे ला में हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल
0: आहे
1: प्राइमा फिशाए जो मतिलबु आहे ऑन द फेस ऑफ हाणे जज साहिब ऑन रिकॉर्ड इहो ॾिसी वरितो त प्रॉपर्टी न हिन जी आहे न ए जी आहे न बी जी आहे हे प्रॉपर्टी कंहिं टे माण्हू जी आहे या हे पुटनि प्रॉपर्टी स्टिल पीउ जे नाले ते है ॿ क्लेम था हाणे हिननि हिक ॿिए जे मथां कूड़ा केस करे छॾियनि हाणे जज साहिबु छा कंदो ऑनरेबल सेशन जज साहिबु छा कंदा हिन प्रॉपर्टी खे जुडिशल कस्टडी में वठी छॾंदा हिनखे पंहिंजे एडमिनिस्ट्रेशन जे अंदरि रखंदा जेसि ताईं केस ख़तमु न थींदो तेसि ताईं इहा कोर्ट जे अंदरि या कोर्ट जे कंट्रोल में रहंदी अगरि सपोज इहा ई प्रॉपर्टी अगरि को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आहे जीअं हाणे अंबनि जो सीज़न आहे अंब लॻा पिया आहिनि ऑल ऑफ सडन त हाणे प्रॉपर्टी हुनखे सीज़ करे छॾियो ठीकु आहे तहवील में वठी छॾियो हाणे अगरि नेचुरल डिके जो शिकार थींदी छा अंब अगरि असां न कढंदासीं या कारकूं न कढंदासीं ख़तमु थी वेंदियूं पोइ छा कंदा उहे सॼा लाहे करे हुनजो जेको बि विकिणे करे मार्केट में जेको बि पैसो उहो बि पंहिंजी तहवील में रखंदा
0: जॾहिं
1: अंब खणी सघंदियूं न कारकूं खणी हा जीअं केस ख़तमु थी वेंदो उनखे जेको बि हुन मां पिक्यूनरी गेन थींदो
0: उहो
1: जज साहिबु हुनखे वापसि हैंड ओवर करे छॾंदा प्रॉपर्टी तव्हांजी उन सेक्शन जे तहत इहो जेको आहे कोर्ट पंहिंजे तहवील में वठी छॾंदी
0: सर वक़्तु मुख़्तसिर आहे पाण वटि ॿ टे सेक्शन अञा रहिजी विया आहिनि मां सम्झा पियो त असांखे डायरेक्ट हाणे सेक्शन 9 ते अचणु घुरिजे एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट ते छाकाणि त ओनली 3 मिनट
1: सेक्शन 9 खां अॻु में सेक्शन 9 त सिर्फ़ु क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एडॉप्ट प्रोसीजर असां वटि हाणे हिन में जेको ट्रायल आहे उहो 265C खां शुरू थो थिए 265B खां अगरि चवजे सप्लाईज़ ऑफ कॉपी खां वठी शुरू थिए थो वञी करे 265K ताईं इहो पूरो सेक्शन या ट्रायल हिन में जेको आहे न लागू थिए थो पियो सेक्शन 7 इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऐं सेक्शन 8 हाणे मेन असांजा टॉपिक इहे हुया जेके इलीगल डिस्पोज़िशन खे वाइंड अप करनि था सेक्शन 7 छा इंटीरियम रिलीफ कंहिं बि माण्हूअ खे अगरि डिस्पोज़िस कयो वियो आहे हाणे जज ऑन रिकॉर्ड ॾिसे थो जेको बि माण्हू आहे जेके डिस्पोज़िस कयो वियो आहे हाणे टेम्परेरी रिलीफ ते इंटीरियम रिलीफ ते जज साहिब हुन खे छा कंदा ऑडर करे उन साॻे माण्हूअ खे रीस्टोर करे छॾंदा उनखे पंहिंजी जॻह में वापसि ऑडर करे त बाबा तव्हां हिन माण्हूअ खे हली पंहिंजी जॻह में रहण ॾियो जेसिताईं केस कंप्लीटली डिसाइडिड थिए तेसिताईं हिन माण्हूअ खे हितां जॻह मां न कढो ठीकु अगरि मिसाल को ऑडर खे नथो तस्लीम करे ऑडर खे तस्लीम नथो करे त ऑनरेबल रीज़नेबल जस्टिफिकेशन सां या रीज़नेबल वे सां जे पुलिस जो तरीक़ो वठी करे उन साॻे ई माण्हू खे उन प्रॉपर्टी में वापसि रीस्टोर कराईंदा सपोज़ हिकिड़ी फैमिली हलो हिनखे असां हीअं था सम्झूं जंहिं रेंट जा केसिस हूंदा आहिनि हिकिड़े माण्हू जो रेंट कंप्लीट थी वियो आहे एग्रीमेंट कंप्लीट थी वियो आहे ऐं हुनखे 60 ॾींहं जो नोटिस मिली चुको आहे पर स्टिल इज़ नॉट वेकिंग द प्रॉपर्टी हाणे हुनखे चलो ठीकु आहे कहिड़े बि तरीक़े सां ॿाहिरि कढी
0: छॾियो
1: हाणे हे क्लेम थो करे साईं मुंहिंजो अञा मुआदो पूरो ई न थियो आहे एग्रीमेंट पूरो न थियो आहे हिननि मूंखे ज़बरदस्ती कढियो आहे छोकी हे जेको कानून आहे लैंड ग्रेबर ताईं बि महदूद न आहे न हिन में फोर्सफुल इवेक्शन बि
0: आहे हिन सिचुएशन में पोइ जज साहिबु जेको
1: जज साहिबु चवंदो हाल ई तव्हां हिनखे रीस्टोर कयो हाल ई हिनखे पंहिंजे छोकी लाज़मी हुन जा ॿार आहिनि बच्चा हुन जो सामान काॾे खणी वेंदो हाल ई तव्हां हिनखे वापसि पंहिंजो रीस्टोर कयो अगरि साबित थिए थो पियो त हिननि तव्हांखे जबरन कढियो आहे त हुनखे पेनल्टी लॻंदी अदरवाइज़ अगरि हुनजो जाइज़ हूंदो सपोज जो अक्यूज पर्सन आज जिनके लिए कंप्लेन एंड केस दाखिल किया जज साहब उनके एज पर डायरेक्शन उनके प्रॉपर्टी तो चाहिए ऑर्डर करे उनके डायरेक्शन दींदा बाबा तुम प्रॉपर्टी खाली करो जो मेन मानू है उनके इन केस में आजाद करे
0: पेनल्टी भी
1: लगन वाली अगर साबित न करे
0: सके डिसाइड थे में कितना टाइम पे लगेगा
1: 60 डेज बाबा लॉ चे तो यू हैव टू डिसाइड द इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट या द केसेस रिलेटेड टू इलीगल डिस्पोजिशन विद इन 60 डेज
0: ओके टू मंथ्स
1: बी गाल माचे में वाहिद ला है जे में गुंजाइश ही ना है एजरमेंट जी
0: ओके
1: अगर एजरमेंट देनी है तो रेयरेस्ट केस एक रेयर केस न रेयरेस्ट केस में तक एजरमेंट देनी है वो भी अन माना अड़ो रीजन दई करे तो जो न टाल जे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होजन तदे वनी करे पर डे घणा इंटीरियम रिलीफ मिली इंटीरियम रिलीफ इवेक्शन पोजिशन इवेक्शन इंटीरियम रिलीफ रीस्टोर साबित अगेंस्ट अक्यूज पर्सन त हिननि असांखे इलीगल डिस्पोजिस तरीक़े सां कढियो आहे त अक्यूज़ खे त सज़ा मिलंदी पेनल्टी अलॻि लॻंदी फाइन अलॻि लॻंदो कंपनसेशन अलॻि भरंदो अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो त कंप्लेनेंट खे 5 लख भरणा पवंदा दाखिल कयो आहे हुनजे ख़िलाफ़ तव्हां हुनजी इज़त खे टार्निश कयो
0: आहे
1: ठीकु आहे छोकी हुनखे लैंड माफ़िया लैंड ग्रेबर जो तव्हां टेक था हणो कयो माण्हूअ खे That is the reason कि उनजी इंजरी 5 लख सां बि कंपनसेट न थींदी छोकी इज़त वॾी शइ हूंदी बस इहो सिर्फ़ सबक सिखण
0: जे लाइ 2005 वारे दौर जे
1: हिसाब सां हुआ हाणे ॾिसो न हाणे इहे सेक्शन 8 ई रिलाय उन ते करे थो जीअं हाणे केस थी वियो त हाणे जंहिंजी प्रॉपर्टी जंहिंजे नाले ते हूंदी इट विल बी रीस्टोर टू दैट पर्सन
0: all right sir to conclude the program and topic ke agar asa conclude kyun aakhir mein ekdo sawal aaye je ko mukhe screen te bhi aaye ho you ek na 3-4 janan mokliyo je ko musalsal mare sando pura te je kare you agar illegal dispossess the pai ke property te

0: मुझे लाइ खिलाफ़ जेको आहे न डिसीशन आयो आहे, मूंखे कन्वेंशन लॻी आहे, कन्वेक्शन लॻी आहे, मूंखे सज़ा लॻी आहे। अगरि कोई कंप्लेनेंट सम्झे थो जेके अक्यूज़ पर्सन उहे ग़लति तरीक़े सां अक्यूट थी विया आहिनि, मुंहिंजो केस जाइज़ हुयो, ग़लति तरीक़े सां न चइजे माना कहिड़े बि तरीक़े सां, ए बी सी डी या लेक ऑफ एविडेंस जे करे मुंहिंजो जेको अक्यूज़ पर्सन आहे उहो ग़लति तरीक़े सां, या वरी उहो लफ़्ज़ छोकी असां हैबिट आदि थी विया लफ़्ज़ जा, त माना उहो कहिड़ी बि वे सां लेक ऑफ एविडेंस जे करे उहो अक्यूट थी वियो आहे। त सेक्शन 8A असांखे अपील जो मौक़ो थो ॾिए त विद इन 30 डेज़ में अगरि कंहिंखे कन्वेक्शन लॻी आहे त 30 ॾींहनि में उहो पंहिंजो अपील दाख़िल करे हाई कोर्ट में
1: okay.
0: अगरि को अक्यूट थी वियो आहे त कंप्लेनन खे 30 ॾींहनि में जेको आहे हुनजे ख़िलाफ़ु रिवीजन दाख़िल करणी पवंदी। सो इहो असांखे जेको आहे न लॉ पूरो जो पूरो प्रोसीजर ॾिए थो पियो त इलीगल इन स्पेसिफिक केसिस खे कीअं डील कजे अपार्ट फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड ऐं जेको आहे न में जेके रेगुलर मैजिस्ट्रेट ट्रायल आहिनि सेशन ट्रायल खां हटी करे इन जे लाइ इहो लॉ क्रिएट कयो वियो।
1: ऐं सर इन शॉर्ट लास्ट में वरी तव्हां रिवाइज़ इहो असांखे ॿुधाईंदा त सज़ा 10 सालनि ताईं थी सघे थी,
0: एक्सटेंडिड आहे,
1: ओके,
0: इट इज़ एक्सटेंडिड, इंटेंसिटी डिपेंड करे थो केतिरी केतिरो माना हुनजी इंटेंसिटी आहे क्राइम जी, छोकी ॾिसो न जेतिरी वधीक इंटेंसिटी सज़ा ओतिरी वधीक, डिपेंड ईअं न जज 3 साल बि सज़ा ॾेई सघे थो, 5 साल बि ॾेई सघे थो, 7 बि ॾेई सघे, एक्सटेंडिड 10 ईयर्स
1: पेनल्टी
0: आहे हुन ते, सज़ा लॻंदी हुनखे, लॻंदी 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
1: ऑल राइट, सो लिसन्स प्रोग्राम जो वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। अॼु असांजो टॉपिक इलीगल डिस्पोज़िशन, जिते शहबाज़ साहब सुठे तरीक़े सां
0: कोशिश कई हूंदी पंहिंजे जेके न सुठे खां सुठो ब्रीफ कयो, सुठे खां सुठो गाइड कयो हुजे,
1: असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी। उम्मीद आहे अॼु जो असांजो प्रोग्राम तव्हांजे लाइ तमामु घणो इंफॉर्मेटिव थियो हूंदो ऐं गॾो गॾु वधीक तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन अगरि घुरिजे शहबाज़ साहब खां त तव्हां हुनजो नंबर नोट करे सघो था। रिक्वेस्ट कंदुसि मूं शहबाज़ साहब खे त नंबर ॾियणु चाहींदुमि,
0: महिरबानी, ऐं मां फीडबैक जो बि वेट कंदुमि
1: जी।
0: फीडबैक असांजे लाइ नेसेसरी आहे, इंपोर्टेंट आहे, छोकी फीडबैक असांखे मोटिवेशन ॾींदो आहे अञा पंहिंजे पाण खे फाइन खां फाइन करण जो।
1: बिल्कुलु ईअं
0: आहे, ठीकु आहे, त मां मोटिवेशन पंहिंजो फीडबैक जो बि वेट कंदुमि ऐं बाबर थैंक यू वेरी मच नंबर लाइ चयो मूंखे, अगरि कंहिंखे ज़रूरत हुजे 0308-1244-306।
1: सो लिसनर्स प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, नेक्स्ट प्रोग्राम में वरी नए मौज़ू सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: न्यूज़। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु ॿाहिरि आहिनि, को बि जहिड़ो न आहे। पहिरें बि अपोज़िशन लीडर जी हैसियत में मिसा खे जमहूरियत ऐं मिसा खे मईशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुलूस ते बतल आछ खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो विहो अॻिते वधो, चइनी सूबनि जी हिक जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम करे रहिया आहिनि, सदन ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतिराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे। अपोज़िशन जी बि हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान चकसी चयो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज़ शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआदो करे त जीअं सियासी जमातूं हिकु ॿिए जूं टंगूं न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानी ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिकु ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानी सां मुलाक़ात थींदी, छा थींदो थी।

0: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी सां मुलाकात करण जो मुतालबो। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेहकाम सां ई माशी इस्तेहकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझु बि न आहे, न बिजली जी क़ीमत घटि थी, न ई लोड शेडिंग ते फ़र्क़ु पियो आहे, न ॿियो कुझु सस्तो थींदो।
1: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप।

0: मेरा इनसे बहुत भाई वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ करूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन मेंबर से आवाज़ अंत
0: दिल लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
7: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03015541456 ऐं तौकीर अहमद 03061623793।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
8: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
8: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 03013992836।

0: त सभु कुझु आहे ही प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि सिंध जा मशहूरु ऐं मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु कराची, इस्लामाबाद ऐं नवाबशाह जा मशहूरु ऐं मारूफ़ डॉक्टर आहिनि। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोरडी कबीर रोड मेहरापुर में अॼुकल्ह मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जर्मन जेकी जर्मनी मुल्क आहे, जर्मनी जी फ्रेंचाइज आहे डॉक्टर साहिब जी, जेकी कराची में बि आहे, हैदराबाद में बि आहे ऐं असांजे मेहरापुर शहर में डॉक्टर साहिब जे तावन सां हिते खोली वई जो डॉक्टर साहिब असुल हितां जे आवाम ते इहा हिकिड़ी स्पेशली महिरबानी कई। अवेयरनेस मैसेजिस ऐं बीमा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण पहुचाइण जे सिलसिले में डॉक्टर साहिब एफ एम रेडियो ते अची करे या हिते 2021 में अची करे जेका क्लिनिक खोल रही हुनजो आगाज़ कयो। छो जो डॉक्टर साहिब जो चवणु आहे का बि बीमारी लाइलाज न आहे, ऐं यकीन ईअं ई आहे, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे। काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके मुख़्तलिफ़ ऐं वॾनि इस्पतालनि मां, वॾनि हॉस्पिटल्स मां लाइलाज थी करे आया ऐं डॉक्टर साहिब वटि आया, अलाह ताला जे हुकुम सां अलहमदिल्ला उहे शिफ़ायाब थिया ऐं अॼु उहे तमामु घणो ख़ुशि आहिनि ऐं अॼु बि डॉक्टर साहिब खे दुआऊं ॾींदा रहंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन आहिनि। 30 सालनि खां वधीक डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे। अव्हांखे अगरि गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाले जी पथरी आहे, पाइल्स आहिनि, गले जा गुदूद आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत नाहे। उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। केॾो बि पुराणो अव्हांखे जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालिज, खंघि, टी बी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंगु सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु या जिन औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जंहिंजो वज़न वधी वञे थो, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-21-96-851 0301-21-96-851 ते तव्हां कॉल करे सघो था। कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। दोस्तनि खे असीं चवंदा आहियूं त अवे ज़्यादा खां ज़्यादा प्रोग्राम में कॉल्स करे डॉक्टर साहिब खां कंहिं बि बीमारी बाबति मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था, डॉक्टर साहिबु अव्हांखे मालूमात ॾींदो। त सभु खां पहिरियां असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चऊं था। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे,
1: अलाह ताला जा करुण अहसान
0: आहे। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु। कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा ॾींहं जेके तव्हां हिते वेहंदा आहियो उहे बि ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा, जीअं असांजा मौज़ू ॿुधंदड़ जेको आहे सो माना आसानी सां सम्झी
1: सघनि। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि बर वक़्तनि टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हर उहा ॼाण जेके असांजा घर वेठे मौज़ीन लिसनर्स आहिनि या दोस्त आहिनि या पेशंट हज़रात आहिनि ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि ताईं पहुचाए सघूं। जीअं लास्ट टाइम जेको आहे सो हिकिड़े ग़िज़ा जे हवाले सां प्रोग्राम कयोसीं, उन्हनि खे तमामु घणो सभिनी साराहियो ऐं मैसेजिस में बि इहे ई जेको आहे सो रिक्वेस्ट कई त आईंदा बि असांखे कुझु अहिड़े ई जेको आहे सो ग़िज़ाउनि जे बारे में जेकी ॼाण जेकी असां बीमारियुनि जे हवाले सां जेके जेके टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां या जेको देसी ॾसनि जे हवाले सां उहे बि इहे प्रोग्राम असांजो मशहूरु हूंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक इन हवाले सां जेकी हर मर्ज़ जे हवाले सां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अमराज़ अव्हांखे ख़बर आहे त नक, कन, गले जो गदूद वधी वेंदो आहे या जेको आहे सो किडनी स्टोन हूंदो आहे या पिते जी पथरी या जेको आहे सो मैदे जी तेज़ाबियत या मैदे जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या जोड़नि जो सूरु या कुन रग जी जेको आहे सो सूरु हूंदो आहे, कुन रग जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन हवाले सां या गर्दनि जा जेके मोहरा जेको आहे सो यानी कमु न कंदा आहिनि या जेको आहे सो कमर दर्द हूंदो आहे या ज़नाना मर्दाना मसाला हूंदा आहिनि, यू टी आई इन्फेक्शन हूंदो आहे, बवासीर जो मसइलो हूंदो आहे।

0: तरह पंहिंजो हकीमनि वारो ठगनि वारो कमु न आहे, फिक्स न आहे, मरीज़ ते डिपेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाए थो, FM ॿुध सॼो कुझु, डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ु ॿुधे थो पियो, ठीकु आहे? रेडियो में लाइव हले पियो तुंहिंजो आवाज़ जो।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर साईं।
1: जी जी, मूंखे इहा ॻाल्हि असां तव्हांजी ॿुधीसीं, हाणे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो, तव्हांखे ॿुधायूं था त एक्चुअली जेकी इहा तकलीफ़ हूंदी आहे या हींअर हिन वक़्तु हर ॿिए टे शख़्स खे इहा तकलीफ़ आहे ऐं खोड़ सारा पेशंट जहिड़ा तव्हां इन में मुबतला न आहियो, इन खां अॻे खोड़ सारा इन में तकलीफ़ में असां वटि ईंदा आहिनि, रोअंदा वेंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा। सो वधीक शिफ़ा अलाह जे हथ में आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त रग जेकी हूंदी आहे उहा ब्लॉक थी वेंदी आहे, पोइ जीअं अवां ग़लती कई आहे कंहिं वटि ॿुध सुध त वियो, किथे रतु कढरायो, के घणा ब्लेड हणाईंदा आहिनि, के ॾंभ ॾियारींदा आहिनि, के छिकूं ॾियारींदा आहिनि। हाणे बि हिकिड़ी दोस्त शाम बि मूंसां ॻाल्हायो त उन सां बि इहो ई जेको आहे सो मसइलो हुयो। सो उनखे बि असां इहो ई ॾिसी ॾिनोसीं त हर पेशंट जी कंडीशन अलॻि हूंदी आहे, उनजी ट्रीटमेंट जेको इलाजु उनजो इलाजु थींदो आहे, मेडिकल में उनजो ऑपरेशन थींदो आहे, असां वटि हिन जी ट्रीटमेंट थींदी आहे। बाक़ी ॿुध सुध ते जेके तव्हां कमु कराइनि उहे थींदा आहिनि, जेके उहे इंतिहाई ग़लति आहिनि। अॻिते हली माण्हू रग जेकी आहे उहा डैमेज थी वेंदी आहे, पोइ हलण खां बि रहिजी वेंदो आहे, उथण खां बि रहिजी वेंदो आहे। इन जे करे हीअ हिकिड़ा हसास मसाला हूंदा आहिनि, हिनखे तव्हां सीरियस वठो ऐं जेको आहे सो अहिड़नि माण्हुनि ते तव्हां न वञो जितां तव्हांखे नुक़सानु पहुचे। हिकिड़ो इलाजु करायो, इलाजु 2 महीना हले, 3 महीना हले, 6 महीना हले, ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी कंडीशन हूंदी आहे, हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तकलीफ़ हूंदी आहे, कंहिंखे घणी वरितल हूंदी आहे, कंहिंखे थोरी हूंदी आहे। कंडीशन में थींदो अवांखे ख़बर आहे जेको आहे इहो ई थींदो आहे, करंट लॻंदा आहिनि, सड़ी टंग उहा सड़ंदी आहे, सुन थी वेंदी आहे, सूर थी वेंदी आहे, इहो सॼो रग जेको आहे सो ब्लॉक थियण जे करे आहे। सो इन जे करे मालिश बि इन जे लाइ सख़्तु मनो आहे ऐं इन जे लाइ हींअर को बि ॾस पंधु अजायो आहे, छो जो हिन वक़्तु तव्हां कंडीशन बिगाड़े छॾी आहे, ॾंभ ॾियारे, रत कढाए। सो इन जे लाइ इन जी ट्रीटमेंट थींदी असांजी क्लिनिक मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते, वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं मौजूदु आहे। सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदासीं। हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमो छंछरु आचरु, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे। सो अव्हांखे इहो ई आहे, तव्हां रूबरू ॾेखारे वञो, वॾी
0: महिरबानी साईं। तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई, महिरबानी। हा हा बिल्कुलु, 6 ॾींहं हूंदा आहियूं, अरबा खमीस जुमो छंछरु आचरु अंगारो ॾींहुं क्लिनिक बंदि आहे, ठीकु आहे मुंहिंजे साईं। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 तां लाइव पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं, मोहबतूं। कॉल जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे। 0301-2196-851 सखी जाम ॾातार खां हिन वक़्तु कॉलर लाइन ते मौजूदु हो, जेको बीमारी बाबति पुछी रहियो हो डॉक्टर साहिब खां त हुन जी रग ब्लॉक आहे ऐं हुनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। जॾहिं रग ब्लॉक हूंदी आहे त यकीननि सॼी जंघ में हिकिड़ो साड़ो रहंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी, ब्लड जो रोलेशन बंदि हूंदो, इंसान खे तकलीफ़ हूंदी, त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां उहो ठीकु आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि प्रोग्राम में। कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, हिकु ॿियो कॉलर आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। केरु सां पियो ॻाल्हायो दादा?
3: खाऊं
0: थींदी आहे, जेको मिसाल कंहिंखे उजरी वारो जेको हूंदो आहे न, असि इंसान जो आसो इंसान की उजरी

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएम न्यूज।
1: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की, एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह है, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने

अपोजिशन जी बि हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजेट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई जो चवण हो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिक ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानीअ ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ात थींदे छा थींदो थी।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमेरिका अमन मुआहिदो 24 कलाकन में फाइनल थियण जो इम्कान जाहिर करे छडियो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे जा नुक्ता 24 कलाकन में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे लाइ अॻु खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमेरिका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहिदे डिजिटल सहियुनि लाइ तयारियूं करे पियो। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो ख़िते में जटादार अमन जो मज़बूत बुनियादु बणिजंदो।

0: ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ची जो चवणु आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआदो थी सघे थो। मुआदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशा जीअं आबनाए हुरमस ते लटकंदी रहंदी। ॿिनि सुफ़नि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक मंद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-33

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

वफाकी बजट पगारदार तबके सनतकारन ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयान जो चवणो हो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीअ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़ जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़नि तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारनि एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो वियो आहे। बजट सां सनतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

0: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून। और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की, तो एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन इट इज नेवर टू लेट, आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वजीर आजम एक बीहर अपोजिशन के मिसा के मैशत मिसा के जमहूरियत गालन की दावत दे छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम चवण हो तो सियासत नजरियो सभी जो पैंजो है, पर पाकिस्तान है तो सब आयु असांजा सब भाईर आहिन, को भी जेड़ो ना है। पहरी भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसा के जमहूरियत मिसा के मैशत लाए चयो हो, पर मुझे खलूस ते बदल अच्छा के रद्द कयो वयो। हाने भी दावत दियां तो अचो वेहो अगते वधो। चैनी सूबन की एक जेरी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क की अमुन लाए दी रात कम कर रहा है। संदन खिदमतुन कुर्बानन जो एतराफ़ एतराम थियण घुर्जे।

0: फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 03005569

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: में टैक्स घटायो आहे। बजेट सा सनतन के हथी मिलन सा गड रोजगार जा जरिया पे पैदा थींदा।
1: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
2: वज़ीर आज़म एक भेरो बीहर अपोजिशन के विसा के मईशत विसा के जमहूरियत के गालन की दावत दई छी। कौमी असम्बली में खिताब कदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त सियासत नजरियो सभी जो पैंजो आहे, पर पाकिस्तान आए तो सब आयूं, असा जा सब भायर आहिन, को भी जड़ो ना है। पहरी भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में विसा के जमहूरियत विसा के मईशत चयो हो, पर मुझे खुलूस से बदल आ चुके रद्द कयो वियो। हाँ भी दावत दिया तो अचो विहो अगत वो चैनी सूबन के एक जितनी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लागू कदड़ इदारा मुल्क के अमन लाय दिन रात कम कर रहा है। सदन खिदमत कुर्बानी जो इतराफ एतराम थन घुर्जे।
0: अपोजिशन की बेहकूमत के गड़जी मामलों के अगते वधाने की आछ। कौमी असेंबली में बजट से गालंदे महमूद खान अचकज़ई जो चवण हो तो गलतियों के सुधारे सकजे तो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक मायदो करे तो जी सियासी जमायतू एक बे जू टंगू न छिकन। फेडरेशन सूबन के पैसा डींदी है, अवा सूबन का वरता आहन। पीटीआई बानी ते एतरी सख्ती न कयो, एक बे के जेलन में वजन सा कुछ भी न थींदो।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान सां मुआहिदे ते सयूं सुभाणे थींदियूं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ऐलान। मुआहिदे ते सयूं थींदे ई आबनाए हुर्मज़ सभिनी लाइ खुली वेंदो।

0: सियासी जवाब तो एक बेजू टंगू न थी कन फेडरेशन सूबन के पैसा डींदी है अवा सूबन का वरता है पीटीआई बानी ते एतरी सख्ती न कयो एक बे के जेलन में विझण सा कुछ न थिंदो पीटीआई बानी सा मुलाकात थिंदी त छा थिंदो
1: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो कौमी असेंबली में गालंदे बैरिस्टर गोहर चयो तो सियासी इस्तेहकाम सा ही मौशी इस्तेहकाम इंदो बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना है न बिजली की कीमत घट थी न ही लोड शेडिंग ते फर्क पयो है न बियो को कुछ सस्तो थियो है
2: मैं तो कदम बढ़ा दूंगा आप भी आ जाए ना अपने घर आ जाए आप मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है इशारों इशारों में मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ।

0: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।